0: Let's now take you through the top story of the hour. Now, the death toll in Nepal flood tragedy has now crossed the 1,000 mark and nearly 4,000 people are still missing. Rescue operations are continuing in full swing with nearly 12,000 people being rescued so far. But the search team encounter challenges, in fact, as intermittent rain, fresh flood alerts. Among those still unaccounted for are more than 600 hydropower workers, many fear trapped inside tunnels. And this is where India's specialized rescue teams are making crucial progress, entering the hydropower tunnel and probing about 185 meters inside the Langtang tunnel. India is also deploying forensic teams to help identify victims as hospitals struggle with hundreds of unidentified bodies. Amid the devastation, actor Sonu Sood has now reached Kathmandu with relief supplies for the victims.
1: मेरे साथ इस वक्त रसुआ ज़िले में हम मौजूद हैं और मेरे साथ जीवन है. जीवन अपनी बहन को खोज रहे हैं. उनकी बहन शाहपुर बेसी में एक दुकान चलाती थी और सैलाब के बाद से, बाढ़ के बाद से वो गायब हैं, लापता हैं. उनकी खोज खबर करने के लिए जीवन जमीन आसमान एक कर रहे हैं. उनके जीजा जी भी साथ में थे, वो सकुशल बच गए, उनको कुछ नहीं हुआ. और अब जीवन के लिए अगला लक्ष्य यही है कि अपनी बहन को ढूंढना. ये जो मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो दुंचे में हेलीकॉप्टर्स जो शव ला रहे हैं उन्हें इसमें रखा जा रहा है वहां से रिकवर कर. तो जीवन को लगा कि वो आके यहाँ देखें, लेकिन यहाँ पर सारी बॉडीज को बॉडी बैग्स में रखा गया है. और यही कोशिश है कि उनको ज्यादा से ज्यादा दिनों तक प्रिजर्व करके रखा गया जाए ताकि जीवन जैसे लोग जो हैं, जो अपनों को ढूंढ रहे हैं, वो आके एक बार पहचान कर पाए. लेकिन जीवन आप अंदर गए, देखा भी आपने, लेकिन आपको लगता है कि आपको बॉडी बैग खुलवाना है, अब क्या
2: नहीं,
1: फैसला
2: वो,
1: लिया
2: वो समझ नहीं है ना. वो इतना दिन हो गया है, वो पहचानने के लिए कुछ रखा नहीं है ना. और सब कुछ खत्म हो गया है वहाँ पर, कुछ बॉडी के वो पार्ट्स कुछ भी पहचानने के लिए लायक नहीं है ना, इसलिए वो देखना मुश्किल हो रहा है, पहचानने के लिए मुश्किल हो रहा है.
1: तो आपको पता है कि जो सरकार है उन्होंने कहा है कि डीएनए टेस्ट भी हो सकता है.
2: हो सकता है,
1: तो आप वो करवाना चाहेंगे?
2: हाँ, करवाना चाहिए. ये अनिवार्य है, ये डीएनए टेस्ट अनिवार्य होना चाहिए था ना, क्योंकि लोग वहाँ से अपने आदमी के लिए कैसे पहचानेंगे, वही एउटा आधार है ना. और तो कुछ नहीं है, और पहचानने के लिए चेहरा नहीं है. उसके लिए तो डीएनए टेस्ट करना एकदम जरूरी है, बहुत जरूरी है.
1: तो आप करवाएंगे डीएनए टेस्ट?
2: हाँ, करवाएंगे.
1: और आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि जो यहाँ शव हैं वो हैं या फिर आगे जो बह गए हैं उसमें हो सकते हैं?
2: हो सकता है, कुछ पता नहीं है ना. वही उसके लिए तो लापता कहते हैं ना. यहाँ पर है या नहीं है, वही रास्ता पर ये खोला में बगा रहा है, ये कुछ पता नहीं है.
1: जीजा जी को अभी जाके घर में क्या कहेंगे?
2: कहने के लिए कुछ पता ही नहीं, क्या कहेंगे, मिला नहीं.
1: वो ठीक है?
2: ठीक है,
1: उनकी तबीयत ठीक है. उनको चोट आई थी?
2: नहीं.
1: आप कहाँ थे? आप बहन के साथ थे?
2: नहीं, मैं घर पर था.
1: आप घर पे थे? आप भी शाहपुर बेसी में रहते थे?
2: नहीं, मैं थोड़ी दिन पहले मैं बीमार हो गया था, इसलिए मैं घर में रेस्ट कर रहा था. उसके बाद कॉल आया यहाँ से, दीदी नहीं मिल रहा है, मैं तो बस गया हूँ, ऐसा कह के जीजा जी ने फोन किया. लेकिन उसके बाद कांटेक्ट भी नहीं हुआ है, इतना से 7 डेज हो गया है, लेकिन कांटेक्ट भी नहीं हुआ.
1: तो आप अपना सैंपल अगर देंगे डीएनए का और जो उन्होंने रखा हुआ सैंपल, तो मैच करेंगे. तो अगर आप भाई बहन हैं और मैच हुआ, क्योंकि भाई बहन का मैच होता है, तो उससे फिर आपको पता चल
2: जाएगा.
1: वो एक तरीका है
2: और कुछ नहीं है.
0: Alright, let's bring you some more updates coming in at this hour. Now, vast parts of Satna and Chitrakoot in Madhya Pradesh were left inundated after heavy rains caused a swell in the Mandakini River. Now, the river rose about 6 meters over the danger mark yesterday. Vast parts of the city were left submerged with an evacuation warning issued for Ramghat. The NDRF was deployed to carry out rescue operations. Many citizens were left homeless after their life savings were washed away in the floods. Officials say residents have been shifted to a safer location and are being provided with food and other assistance.
3: देखिए इस वक्त हम चित्रकूट के तरहुआ इलाके में मौजूद हैं। एक रेस्क्यू बोट है जो लोगों को सामान बांटने आई है, खाने पीने की सामग्री बांटने आई है। राजू तस्वीर दिखाएंगे सबसे पहले कि मंदाकिनी का जलस्तर कितना अधिक है कि जो सड़कें हैं वो लबालब भरी हुई नजर आएंगी आपको। जो लोगों के घर हैं वो डूबे हुए हैं। जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं जो तैरते हुए आपको नजर आ रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग, उनके गले तक पानी यानी कि सर के पास तक पानी है, तैरते हुए लोग नजर आ रहे हैं, इतना अधिक जलस्तर है। ये निचली बस्ती है जो पूरी तरीके से मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ने की वजह से डूब चुकी है और यहाँ पर रेस्क्यू बोट के जरिए प्रशासन जो है वो लोगों को भोजन मुहैया कराने पहुँचा है क्योंकि यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है। ये पूरी जो सड़क है ये अगर मेन रोड से हम देखेंगे तो मेन रोड से थोड़ी सी नीचे की सड़क है और वहाँ से सड़क पर पूरा पानी भरा हुआ नज़र आएगा। जो इस तरीके के खाने के पैकेट्स हैं वो ले आए गए हैं, इन खाने के पैकेट्स को लोगों को बांटा जा रहा है ताकि वो किसी तरीके से खाना खा पाएं क्योंकि कई जगहों पर न राशन बचा है और ना ही खाने की अन्य सामग्रियां बची हैं। रामघाट के पास भी जल भराव की स्थिति हो गई है। जहां पर हम मौजूद हैं तरोहा में, वहां पर भी बाकायदा आप देख रहे हैं कि जलमग्न पूरा इलाका नज़र आ रहा है। सड़कें पूरी तरीके से डूब चुकी हैं, घर जो हैं वो डूब चुके हैं। जो थोड़ा ऊँचाई पर जो जगहें बची हुई हैं सिर्फ वहीं पर पानी नहीं है, लेकिन अगर लगातार इसी तरीके से जो बारिश का दौर है पहाड़ी इलाकों में वो होती रही और मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ता रहा तो फिर वो इलाके भी डूब जाएंगे क्योंकि कुछ ऊंचाई पर जो घर बने हुए हैं या जो टापू जैसी स्थितियां जहां पर हैं वहां पर हल्की राहत देखने को मिले, लेकिन अन्य जगहों पर पूरी तरीके से स्थिति जलमग्न नजर आ रही है।
0: Or let's now take it to Uttar Pradesh. Now it's a new age political war playing out on social media with AI generated videos becoming the latest weapon ahead of the 2027 UP battle. Now the controversy began after the BJP released an AI video targeting Akhilesh Yadav, referring to him as Thipu and even accusing him of corruption. Hitting back, the Samajwadi Party's IT cell released a series of AI generated videos targeting the Chief Minister Yogi Adityanath and showing him smoking a chillum. Now the videos also reference the temple donation theft and show Chief Minister Yogi counting the cash. In one video, Chief Minister Yogi is seen dancing while targeting him over unemployment and the paper leaks. The BJP slammed the videos as an insult to saints and the Sanatan tradition. Alright, let's take you through some more developments coming in. Chief Minister Vijay's movie moment in Salem. Now we're learning an important update, especially coming from Tamil Nadu, in which Chief Minister Vijay has had an epic movie moment. Let's take you through the details.
4: A chief minister on official duty. A superstar surrounded by a crowd. And then an unscripted stop that produced a moment straight out of a movie. Vijay was in Salem, inspecting the Mettur hydroelectric power station. But on his way to the airport, Vijay's convoy suddenly stopped at a roadside farmhouse. There, Vijay walked towards a group of elderly women working in the fields. One of them was Chellam. The two then walked together through the garden. The Chief Minister spent a few unhurried moments with her. And then came the gesture that has taken social media by storm. Vijay reached for his Christian Dior sunglasses and placed them on Chellam's face. For the woman who had come out to simply catch a glimpse of her favourite star, it became an unforgettable encounter.
5: அவ்வளோ சந்தோஷமா இருந்துச்சு. அதனால எனக்கு என்ன கொடுக்கறது என்ன பேசுறதுன்னே தெரியல. சொன்னேன் களி கிளறிக்கிறேன் சாப்பிடுன்னு, நான் சாப்பிட்டு வந்தேன்னு சொன்னேன்.
4: The images have now traveled far beyond Salem and social media users are drawing a striking parallel between Vijay's interaction with Chellam and iconic images of the late Tamil superstar and former Tamil Nadu Chief Minister MGR interacting with ordinary people. Vijay may have traded movie sets for political stages, but the superstar connect hasn't disappeared. Moments like this show how quickly that cinematic image can come alive in the real world. Bureau Report, NDTV.
0: All right, on that note, we're slipping into a very short break. More news and updates on the other side. Stay on with us on the broadcast.

0: Let's now take you through the top story of the hour. Now, the death toll in Nepal flood tragedy has now crossed the 1,000 mark and nearly 4,000 people are still missing. Rescue operations are continuing in full swing with nearly 12,000 people being rescued so far. But the search team encounter challenges, in fact, as intermittent rain, fresh flood alerts. Among those still unaccounted for are more than 600 hydropower workers. Many fear trapped inside tunnels. And this is where India's specialized rescue teams are making crucial progress, entering the hydropower tunnel and probing about 185 meters inside the Langtang tunnel. India is also deploying forensic teams to help identify victims as hospitals struggle with hundreds of unidentified bodies. Amid the devastation, actor Sonu Sood has now reached Kathmandu with relief supplies for the victims.
1: मेरे साथ इस वक्त रसुआ जिले में हम मौजूद हैं और मेरे साथ जीवन है. जीवन अपनी बहन को खोज रहे हैं. उनकी बहन शाहपुर बेसी में एक दुकान चलाती थी और सैलाब के बाद से, बाढ़ के बाद से वो गायब हैं, लापता हैं. उनकी खोज खबर करने के लिए जीवन जमीन आसमान एक कर रहे हैं. उनके जीजा जी भी साथ में थे, वो सकुशल बच गए, उनको कुछ नहीं हुआ. और अब जीवन के लिए अगला लक्ष्य यही है कि अपनी बहन को ढूंढना. ये जो मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो दुंचे में हेलीकॉप्टर्स जो शव ला रहे हैं उन्हें इसमें रखा जा रहा है वहां से रिकवर कर. तो जीवन को लगा कि वो आके यहाँ देखें, लेकिन यहाँ पर सारी बॉडीज को बॉडी बैग्स में रखा गया है. और यही कोशिश है कि उनको ज्यादा से ज्यादा दिनों तक प्रिजर्व करके रखा गया जाए, ताकि जीवन जैसे लोग जो हैं, जो अपनों को ढूंढ रहे हैं, वो आके एक बार पहचान कर पाए. लेकिन जीवन, आप अंदर गए, देखा भी आपने, लेकिन आपको लगता है कि आपको बॉडी बैग खुलवाना है, अब क्या फैसला लिया
2: है? संभव नहीं है ना, वो इतना दिन हो गया है, वो पहचानने के लिए कुछ रखा नहीं है ना, वो सब कुछ खत्म हो गया है. वहाँ पर कुछ बॉडी के वो पार्ट्स कुछ भी पहचानने के लिए लायक नहीं है ना, इसलिए वो देखना मुश्किल हो रहा है, पहचानने के लिए मुश्किल हो रहा है.
1: तो आपको पता है कि जो सरकार है उन्होंने कहा है कि डीएनए टेस्ट भी हो सकता है.
2: हो सकता है,
1: तो आप वो करवाना चाहेंगे?
2: करवाना चाहिए, ये अनिवार्य.

0: ये हड्डियां नहीं जस्ता अनिवार्य होना चाहिए था ना, क्योंकि लोग वहां से अपने आदमी के लिए कैसे पहचानेंगे, वही एउटा आधार है ना, और तो कुछ नहीं है, और पहचानने के लिए चेहरा नहीं है, उसके लिए तो डीएनए टेस्ट करना एकदम जरूरी है, बहुत जरूरी।
1: तो आप करवाएंगे डीएनए टेस्ट?
0: करवाएंगे।
1: और आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि जो यहाँ शव हैं वो हैं या फिर आगे जो बह गए हैं उसमें हो सकता है?
0: कुछ पता नहीं है ना, वही उसके यूएस के लिए तो लापता कहते हैं ना, यहाँ पर है या नहीं है, वही रास्ता पर ये खुला में बगा रहा है, ये कुछ पता नहीं है।
1: जीजा जी को अभी जाके घर में क्या कहेंगे?
0: कहने के लिए कुछ पता ही नहीं, क्या कहेंगे, मिला नहीं।
1: वो ठीक है?
0: ठीक है,
1: उनकी तबीयत ठीक है। उनको चोट आई थी?
0: नहीं।
1: आप कहाँ थे? आप बहन के साथ थे?
0: नहीं, मैं घर पर था।
1: आप घर पे थे? आप भी सापरू बेसी में रहते थे?
0: नहीं, मैं थोड़ी दिन पहले मैं बीमार हो गया था, इसलिए मैं घर में रेस्ट कर रहा था। उसके बाद कॉल आया यहाँ से, दीदी नहीं मिल रहा है, मैं तो बस गया हूँ, ऐसा कह के जीजाजी ने फोन किया, लेकिन उसके बाद कांटेक्ट भी नहीं हुआ, इतना से 7 डेज हो गया है लेकिन कांटेक्ट भी नहीं हुआ।
1: तो आप अपना सैंपल अगर देंगे डीएनए का और जो उन्होंने रखा हुआ सैंपल तो मैच करेंगे, तो अगर आप भाई बहन हैं और मैच हुआ, क्योंकि भाई बहन का मैच होता है, तो उससे फिर आपको पता चल
0: जाएगा।
1: वो एक तरीका है
0: और कुछ नहीं है।
2: ओरल एस्प्रिन की सम मोर अपडेट्स कमिंग इन एट द सावन और वास पास और सतना चित्रकूट मध्य प्रदेश वर लेफ्ट इनंडेटेड आफ्टर हेवी रेन्स कॉज्ड अ स्वेल इन द मदाकिनी रिवर। नाउ द रिवर रोज अबाउट 6 meters ओवर द डेंजर मार्क यस्टरडे। Vast parts of the city were left submerged with an evacuation warning issued for Ramghat. The NDRF was deployed to carry out rescue operations. Many citizens were left homeless after their life savings were washed away in the floods. Officials say residents have been shifted to a safer location and are being provided with food and other assistance.
3: Look, इस वक्त हम चित्रकूट के तरहुआ इलाके में मौजूद हैं। एक रेस्क्यू बोट है जो लोगों को सामान बांटने आई है, खाने पीने की सामग्री बांटने आई है। राजू तस्वीर दिखाएंगे सबसे पहले कि मंदाकिनी का जलस्तर कितना अधिक है, कि जो सड़कें हैं वो लबालब भरी हुई नजर आएंगी आपको, जो लोगों के घर हैं वो डूबे हुए हैं, जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं जो तैरते हुए आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग उनके गले तक पानी, यानी कि सर के पास तक पानी है, तैरते हुए लोग नजर आ रहे हैं, इतना अधिक जलस्तर है। ये निचली बस्ती है जो पूरी तरीके से मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ने की वजह से डूब चुकी है, और यहाँ पर रेस्क्यू बोट के जरिए प्रशासन जो है वो लोगों को भोजन मुहैया कराने पहुंचा है, क्योंकि यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है। ये पूरी जो सड़क है, ये अगर मेन रोड से हम देखेंगे तो मेन रोड से थोड़ी सी नीचे की सड़क है, और वहाँ से सड़क पर पूरा पानी भरा हुआ नज़र आएगा। जो इस तरीके के खाने के पैकेट्स हैं वो ले आए गए हैं, इन खाने के पैकेट्स को लोगों को बांटा जा रहा है ताकि वो किसी तरीके से खाना खा पाएं, क्योंकि कई जगहों पर न राशन बचा है और ना ही खाने की अन्य सामग्रियां बची हैं। रामघाट के पास भी जल भराव की स्थिति हो गई है, जहां पर हम मौजूद हैं तरोहा में, वहां पर भी बाकायदा आप देख रहे हैं कि जलमग्न पूरा इलाका नज़र आ रहा है, सड़कें पूरी तरीके से डूब चुकी हैं, घर जो हैं वो डूब चुके हैं, जो थोड़ा ऊँचाई पर जो जगहें बची हुई हैं सिर्फ वहीं पर पानी नहीं है। लेकिन अगर लगातार इसी तरीके से जो बारिश का दौर है पहाड़ी इलाकों में वो होती रही और मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ता रहा तो फिर वो इलाके भी डूब जाएंगे, क्योंकि कुछ ऊंचाई पर जो घर बने हुए हैं या जो टापू जैसी स्थितियां जहां पर हैं वहां पर हल्की राहत देखने को मिले, लेकिन अन्य जगहों पर पूरी तरीके से स्थिति जलमग्न नजर आ रही है।
2: Or let's now take it to Uttar Pradesh. Now it's a new age political war playing out on social media with AI generated videos becoming the latest weapon ahead of the 2027 UP battle. Now the controversy began after the BJP released an AI video targeting Akhilesh Yadav, referring to him as Sipu and even accusing him of corruption. Hitting back, the Samajwadi Party's IT cell released a series of AI generated videos targeting the Chief Minister Yogi Adityanath and showing him smoking a chillum. Now the videos also reference the temple donation theft and show Chief Minister Yogi counting the cash. In one video, Chief Minister Yogi is seen dancing while targeting him over unemployment and the paper leaks. The BJP slammed the videos as an insult to saints and the Sanatan tradition. All right, let's take you through some more developments coming in. Chief Minister Vijay's movie moment in Salem. Now, we're learning an important update, especially coming from Tamil Nadu, in which Chief Minister Vijay has had an epic movie moment. Let's take you through the details.
4: A chief minister on official duty. A superstar surrounded by a crowd. And then, an unscripted stop that produced a moment straight out of a movie. Vijay was in Salem, inspecting the Metrur hydroelectric power station. But on his way to the airport, Vijay's convoy suddenly stopped at a roadside farmhouse. There, Vijay walked towards a group of elderly women working in the fields. One of them was Chellam. The two then walked together through the garden. The chief minister spent a few unhurried moments with her. And then came the gesture that has taken social media by storm. Vijay reached for his Christian Dior sunglasses and placed them on Chellam's face. For the woman who had come out to simply catch a glimpse of her favorite star, it became an unforgettable encounter. The images have now traveled far beyond Salem, and social media users are drawing a striking parallel between Vijay's interaction with Chellam and iconic images of the late Tamil superstar and former Tamil Nadu Chief Minister MGR interacting with ordinary people. Vijay may have traded movie sets for political stages, but the superstar connect hasn't disappeared. Moments like this show how quickly that cinematic image can come alive in the real world. Bureau Report, NDTV.
2: All right, on that note, we're slipping into a very short break. More news and updates on the other side. Stay on with us on the broadcast.
5: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
6: We are crossing a heavy ridgeline now. We are going to be descending into the valley where the damage has taken place. This is the Bhotekoshi River now. It used to be Trishuli downstream. It's now the Bhotekoshi. This is the first look that we saw by helicopter of the exact spot where the floods broke through. To my left over here, they were all homes. Ashwini, you see the bank of the river over here. They were all homes. None of them exist. They've been completely washed away. There is 100% destruction over here. 100%. There are no homes, no structures at all. As we go back towards Kathmandu, there's a helicopter right there. It's got dead bodies slung underneath it, is what we're told. Well, we're now in Trishuli, and it's in fact just on the banks of the Trishuli over here that a lot of the damage has taken place. Well, we are at one of the sites where there are rescue operations which are now taking place. The Nepalese army is over here. How is every minute absolutely critical in an operation like this? Time is not in your side.
7: We are more than 90 people here. So we are trying best.
6: With our reports, we hope to get and provide our viewers a bigger, better idea of the extent of the devastation and what the people of Nepal are going through. Vishnu Shom for NDTV.
5: Three decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. holding the line when it mattered most. Times change. Our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: बहन को ढूंढना। ये जो मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो दुंचे में हेलीकॉप्टर्स जो शव ला रहे हैं उन्हें इसमें रखा जा रहा है वहां से रिकवर कर। तो जीवन को लगा कि वो आके यहाँ देखें, लेकिन यहाँ पर सारी बॉडीज को बॉडी बैग्स में रखा गया है और यही कोशिश है कि उनको ज्यादा से ज्यादा दिनों तक प्रिजर्व करके रखा गया जाए, ताकि जीवन जैसे लोग जो हैं, जो अपनों को ढूंढ रहे हैं, वो आके एक बार पहचान कर पाए। लेकिन जीवन, आप अंदर गए, देखा भी आपने, लेकिन आपको लगता है कि आपको बॉडी बैग खुलवाना है, अब क्या
1: नहीं,
0: फैसला
1: वो,
0: लिया
1: वो
0: है?
1: संभव नहीं है ना, वो इतना दिन हो गया, वो पहचानने के लिए कुछ रखा नहीं है ना, वो सब कुछ खत्म हो गया है। वहाँ पर कुछ बॉडी के वो पार्ट्स कुछ भी पहचानने के लिए लायक नहीं है ना, इसलिए वो देखना मुश्किल हो रहा है, पहचानने के लिए मुश्किल हो रहा है।
0: तो आपको पता है कि जो सरकार है उन्होंने कहा है कि डीएनए टेस्ट भी हो सकता है?
1: हो सकता है।
0: तो आप वो करवाना चाहेंगे?
1: हाँ, करवाना चाहिए। ये अनिवार्य है, ये डीएनए टेस्ट अनिवार्य होना चाहिए था ना, क्योंकि लोग वहाँ से अपने आदमी के लिए कैसे पहचानेंगे, वही एउटा आधार है ना, और तो कुछ नहीं है, और पहचानने के लिए चेहरा नहीं है, उसके लिए तो डीएनए टेस्ट करना एकदम जरूरी है, बहुत जरूरी है।
0: तो आप करवाएंगे डीएनए टेस्ट?
1: हाँ, करवाएंगे।
0: और आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि जो यहाँ शव हैं वो हैं या फिर आगे जो बह गए हैं उसमें हो सकता है?
1: जो कुछ पता नहीं है ना, वही उसके लिए तो लापता कहते हैं ना, यहाँ पर है या नहीं है, वही रास्ते पर है।

0: अंदर गए, देखा भी आपने, लेकिन आपको लगता है कि आपको बॉडी बैग खुलवाना है, अब क्या फैसला लिया है?
1: वो संभव नहीं है ना, वो इतना दिन हो गया है।

0: Ramghat. The NDRF was deployed to carry out rescue operations, but many citizens were left homeless after their life savings were washed away in the floods. Officials say the residents have been shifted to a safer location. They are being provided with food and other required assistance. Take a look at these ground reports.
1: ठीक, इस वक्त हम चित्रकूट के तरहुआ इलाके में मौजूद हैं। एक रेस्क्यू बोट है जो लोगों को सामान बांटने आई है, खाने पीने की सामग्री बांटने आई है। राजू तस्वीर दिखाएंगे सबसे पहले कि मंदाकिनी का जलस्तर कितना अधिक है, कि जो सड़कें हैं वो लबालब भरी हुई नजर आएंगी आपको, जो लोगों के घर हैं वो डूबे हुए हैं। जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, जो तैरते हुए आपको नजर आ रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग, उनके गले तक पानी, यानी कि सर के पास तक पानी है, तैरते हुए लोग नजर आ रहे हैं, इतना अधिक जलस्तर है। ये निचली बस्ती है जो पूरी तरीके से मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ने की वजह से डूब चुकी है, और यहाँ पर रेस्क्यू बोट के जरिए प्रशासन जो है वो लोगों को भोजन मुहैया कराने पहुँचा है, क्योंकि यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है। ये पूरी जो सड़क है, ये अगर मेन रोड से हम देखेंगे तो मेन रोड से थोड़ी सी नीचे की सड़क है, और वहाँ से सड़क पर पूरा पानी भरा हुआ नज़र आएगा। जो इस तरीके के खाने के पैकेट्स हैं वो ले आए गए हैं, इन खाने के पैकेट्स को लोगों को बांटा जा रहा है ताकि वो किसी तरीके से खाना खा पाएँ, क्योंकि कई जगहों पर न राशन बचा है और ना ही खाने की अन्य सामग्रियां बची हैं। रामघाट के पास भी जल भराव की स्थिति हो गई है। जहां पर हम मौजूद हैं तरौहा में, वहां पर भी बाकायदा आप देख रहे हैं कि जलमग्न पूरा इलाका नज़र आ रहा है। सड़कें पूरी तरीके से डूब चुकी हैं, घर जो हैं वो डूब चुके हैं। जो थोड़ा ऊँचाई पर जो जगहें बची हुई हैं सिर्फ वहीं पर पानी नहीं है, लेकिन अगर लगातार इसी तरीके से जो बारिश का दौर है पहाड़ी इलाकों में वो होती रही और मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ता रहा तो फिर वो इलाके भी डूब जाएंगे, क्योंकि कुछ ऊंचाई पर जो घर बने हुए हैं या जो टापू जैसी स्थितियां जहां पर हैं वहां पर हल्की राहत देखने को मिले, लेकिन अन्य जगहों पर पूरी तरीके से स्थिति जलमग्न नजर आ रही है। चित्रकूट में बीते दिनों आई बाढ़ की निशानी अब तक खत्म नहीं हुई थी कि दोबारा से मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ने लगा है। इस वक्त हम एक गारमेंट्स की दुकान पर खड़े हैं जो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। जितने भी सामान इनके पास थे वो बर्बाद हो चुके हैं और यहाँ से सामानों को हटाया गया है। उन्होंने सोचा कि अब फिर से दुकान को सेटल करेंगे, लेकिन अचानक से मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों को दोबारा बाहर निकाला जा रहा है और पानी सड़कों तक आ चुका है। जो लोग यहाँ पर हैं उनसे बातचीत करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। भाई साहब, क्या नाम है आपका?
2: विवेक अग्रवाल।
1: विवेक जी, क्या काम था आपका, कितना नुकसान हुआ?
2: ये भाई साहब, हमारा रेडीमेड का कपड़े का गारमेंट का शॉप था यहाँ पास, और हमको 15 साल यहाँ दुकान खुले हुए हो गया है, और हमारे पिताजी हैं और इनकी भी उम्र 60 साल है, और 60 सालों में इन्होंने ऐसी बाढ़ कभी देखी नहीं। पहली बार ऐसी प्राकृतिक आपदा चित्रकूट में आई है, और जलस्तर इतनी तेज़ी से बढ़ा जो 3 दिन पहले बढ़ा था अभी, कि हम लोगों को सामान हटाने का बिल्कुल ही मौका मिला नहीं।
1: सर, 2003 में भी एक बाढ़ आई थी, उस समय उससे ज़्यादा खतरनाक थी?
3: उससे ज़्यादा खतरनाक थी, उससे 5-6 फीट ऊपर ज़्यादा पानी था, और 2003 में तो रफ्तार अच्छी कम थी, थोड़ा इससे ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इसमें टंडे में आधा घंटे 1 घंटे के अंदर पानी इतना आ गया है कि कोई आदमी सामान नहीं उठा पाया, कोई भी दुकानदार
1: कुछ समझ नहीं पाया।
3: और जितना ले जाते बना 1 घंटे में ले गए आदमी, इसमें इतना पानी आ गया। इसके बाद हम लोगों ने छोड़ दिया कि जान हान ना हो जा पाए, सामान चला जाएगा तो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
1: फिर से जलस्तर बढ़ रहा है, क्या लग रहा है, जिस तरीके से
3: बढ़ रहा है, लेकिन शासन द्वारा ये कहा जा रहा है कि पिछली बार से ज़्यादा पानी आ सकता है।
1: चित्रकूट में मंदाकिनी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, और अभी जो पानी का स्तर है वो कमर से ज्यादा तक पहुंच चुका है। पूरा जो इलाका है वो आपको डूबा हुआ नजर आएगा। आसपास घर, गुमटी, सड़क पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। लोगों के घर के जो सामान हैं वो बहुत ज्यादा बह चुके हैं। आप देखेंगे बाहर लोगों ने टीवियां निकाल कर रखी हैं। कल थोड़ा बहुत जलस्तर कम जरूर हुआ था, लेकिन आज फिर तेजी से जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों की मुसीबतें फिर से खड़ी हो गई हैं। और ये देखिए, बहुत सारा घर का जो सामान है वो बह चुका है। सर, ये टीवी वगैरह आपकी हैं?
4: जी हाँ।
1: कहाँ लगी थी? घर के अंदर लगी?
4: ये घर में लगी थी, ऊपर
1: के बाहर आ गई।
4: बाहर के बाहर आ गई, नीचे जनरल स्टोर की दुकान थी पूरी।
1: अच्छा,
4: वो सब सामान बह गया, कुछ नहीं बचा,
1: पूरा बह गया।
4: पूरा
1: साफ सफाई की है, लेकिन जिस तरीके से पानी यहाँ तक है तो फिर अंदर आ जाएगा।
4: हाँ, आ जाएगा अंदर, फिर आ जाएगा। जिस तरह बढ़ रहा है वो हो सकता है फिर पहुँच जाए वहीं के वहीं।
1: तो देखिए, जो मंदाकिनी का जलस्तर है वो सुबह से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और अभी भी आप देखेंगे तो पानी जो है वो बहुत अधिक है, और लोगों को उतनी ही मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है जैसे कुछ दिन पहले जो स्थिति हुई थी, क्योंकि पानी उतरा ज़रूर था लेकिन अब पानी का जो बहाव है वो फिर से कमर तक आ चुका है। पूरी सड़क जो है वो डूबी हुई नज़र आ रही है। लोग फिर से छतों पर शरण लेने के लिए जा रहे हैं। आप ऊपर देखेंगे तो अभी कुछ लोग वहाँ छत पर चढ़े हैं। लगातार जो प्रशासन है वो रामघाट के आसपास के इलाके में अपील कर रहा है कि लोग अपने घरों को खाली कर दें, लेकिन इस तरफ हमें उस तरीके की अपील प्रशासन की नहीं देखने को मिल रही है। ना ही NDRF की टीम है और ना ही SDRF की टीम है। चित्रकूट से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, NDTV।
0: All right, on that note, let's turn our attention to breaking news we're tracking at the moment. A class 11 student has died after falling from the third floor of a school building in Faridabad, and police are investigating what led to this incident. The teenager Janvi was taken to hospital by school staff but died on the way, we're told. Her family has alleged that she was punished by a teacher after she went out to eat biryani without informing the school. They say she was made to stand for several hours, was deeply distressed because of this incident. The school, however, disputes that account, and the principal has said that Janvi was not punished and had left the classroom saying she was going to the restroom. So at this stage, we have two sharply different accounts of what happened before this fall. Listen in to the reactions we've lined up for you from Janvi's father and the police before we get in the lowdown with Ishika.
5: कुछ भी नहीं बताया हमको, अब बताया जब वो एक्सपायर हो गया, जब बताया हमको आ जाओ देखने के लिए। भी बच्चों से जब बस में स्कूल में हमारे मिली है रास्ते में बस, तो उसी क्लास बच्चे से पूछा, बेटा ऐसा कैसे उसने छत पे से कूदी। उसको चार घंटे से स्कूल वाले टीचरों ने धूम में खड़ा कर रखा था, पनिशमेंट दे रखा था, किसी खाने पीने
6: के चक्कर में पनिशमेंट दे रखा था।
5: ये लड़कियां बिरयानी खा रही थी क्लास में, उसी में आपस में लड़ रहे होंगे, झगड़ रहे होंगे खाने पीने के ऊपर, उसी में मैडम ने पनिशमेंट जैसे क्लास से बाहर निकाल दिया, बाहर खड़ी हो जाए, चाहे वो भी चार घंटे तक।
7: तो तीसरी मंजिल से कहीं उसने छलांग लगा दी और उसकी मौत हो गई है। बीके के में उसकी यहाँ डेड बॉडी रखवाई हुई है। अभी उसकी आगे की इन्वेस्टिगेशन, ये अभी जांच का विषय है, क्या वजह रही है? अभी तक तो कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई है।
0: Ishika is tracking all the final developments for us. She joins us live with clarity we need at the moment. Ishika, what do police know so far about Janvi's movements inside the school before this fall? Do they have CCTV footage, any eyewitness accounts that can really establish where she was and what happened immediately beforehand?
8: It is a very unfortunate incident that has now come to light, especially from Faridabad, where in fact a 16-year-old jumped off a building, and the family has now alleged that it was due to the fact that the teacher had punished the student and in fact made her to stand for 4 hours. We are currently present at that very school, and in fact this is the spot where from where she jumped off, as per the eyewitnesses. Now today, let me show you the visuals of the school. It appears that the school is closed for today. In fact, we are also trying to speak to people here who are just living here to get, you know, account of what they in fact saw at that particular time. Sir, आप यहीं पर थे, आपने देखा कि कब हुआ था ये पूरी घटना?
9: तो शाम को आए थे, लड़की ने बताया था।
8: अच्छा, आप थे तभी? क्या, कहाँ से कूदी थी?
9: यहाँ से गिरी थी।
8: यहाँ पर गिर गई?
9: हमने पता।
8: ये कितने बजे की घटना
9: थी? 1:30 बजे करीब।
8: स्कूल में उस वक्त क्या हलचल थी, आप लोगों को कुछ दिखा?
9: छुट्टी होने का टाइम हो रहा था।
8: अच्छा। अंदर क्या हुआ उसके बारे में कुछ पता चला?
9: उसके बारे में कुछ पता चला।
8: So far, Parmeshwar, in fact, you know, what the police has also told us, in fact, is that a conflicting statements that has come from both the side. On one hand, it is the family which has alleged that it was due to the punishment that was given by the teacher, you know, because of a dispute that erupted inside the classroom over eating biryani and making her stand for about 4 hours, after which she was distressed and she took this step. On the other hand, it is the principal who has gone on to in fact call these claims as baseless and has gone on to say that no punishment was given to the student and that she went on her own, in fact going on to say that she went for a restroom break. So the police are in fact, you know, they are looking at all the CCTV footage. They are also going to take the statements of the students and in fact all the teachers as to what happened, and only then the matter will be clear. Over to you,
0: Ishika. We'll of course continue to track how this probe progresses. As always, thanks so much for joining us with the latest details. All right, further breaking updates we're tracking on the breakfast show this morning. Greater Bengaluru Development Minister Krishna Bairegowda has pulled up civic officials over poor park maintenance. and alleged irregularities in infrastructure works, questioning whether funds earmarked for park

0: to the international support, because you know, national calamities, they don't see borders. You don't know where it's coming from, and you don't know who's going to be hit. And you know, Nepal, we contribute very, very less to the global emission. Still, we are hardly hit. And but the kind of support that we're getting from the international community is heartwarming. We've got support from India, our neighbor, you know, our closest neighbor, and they've helped us with tons of material and relief operation and drones and technical support for the technical support also.
1: Well, we have no doubts in my mind that India is equally concerned, and I've seen this on multiple occasions. Even during the 2015 earthquake, India was the first one, Prime Minister Modi was the first one to come up with the immediate rescue arrangement, support, logistics. Even when our Prime Minister that time happened to be in Indonesia on a conference, but he immediately started acting. So I think India has that gained that prominence, gained that capacity, and gained that has the ability for given the you know, a scale at which India has been able to move, I mean, build the infrastructure. There has been a transformation in information quality of the infrastructure that India has been able to build over during the last 12 years. So the whole system is of a different level and caliber.
2: Well, let's take you to the ground in Dunche now. The search for the missing continues there, as families there are struggling to identify their loved ones. My colleague Sikta Dio spoke to Jeevan, who's still looking for his missing sister. Here's what Jeevan told NDTV.
3: मेरे साथ इस वक्त रसुआ जिले में हम मौजूद हैं और मेरे साथ जीवन है. जीवन अपनी बहन को खोज रहे हैं. उनकी बहन शाहपुर बेसी में एक दुकान चलाती थी और सैलाब के बाद से, बाढ़ के बाद से वो गायब हैं, लापता हैं. उनकी खोज खबर करने के लिए जीवन जमीन आसमान एक कर रहे हैं. उनके जीजा जी भी साथ में थे, वो सकुशल बच गए, उनको कुछ नहीं हुआ. और अब जीवन के लिए अगला लक्ष्य यही है कि अपनी बहन को ढूंढना. ये जो मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो दुंचे में हेलीकॉप्टर्स जो शव ला रहे हैं, उन्हें इसमें रखा जा रहा है वहाँ से रिकवर कर कर. तो जीवन को लगा कि वो आके यहाँ देखें, लेकिन यहाँ पर सारी बॉडीज को बॉडी बैग्स में रखा गया है. और यही कोशिश है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक प्रिजर्व करके रखा गया जाए, ताकि जीवन जैसे लोग जो हैं, जो अपनों को ढूंढ रहे हैं, वो आके एक बार पहचान कर पाए. लेकिन जीवन, आप अंदर गए, देखा भी आपने, लेकिन आपको लगता है कि आपको बॉडी बैग खुलवाना है, अब क्या
4: नहीं,
3: फैसला लिया
4: है? संभव नहीं है ना, वो इतना दिन हो गया है, वो पहचानने के लिए कुछ रखा नहीं है ना, वो सब कुछ खत्म हो गया है. वहाँ पर कुछ बॉडी के वो पार्ट्स कुछ भी पहचानने के लिए लायक नहीं है ना, इसलिए वो देखना मुश्किल हो रहा है, पहचानने के लिए मुश्किल हो रहा है.
3: तो आपको पता है कि जो सरकार है, उन्होंने कहा है कि डीएनए टेस्ट भी हो सकता है.
4: हो सकता है.
3: तो आप वो करवाना चाहेंगे?
4: हाँ, करवाना चाहिए. ये अनिवार्य है, ये डीएनए टेस्ट अनिवार्य होना चाहिए था ना, क्योंकि लोग वहाँ से अपने आदमी के लिए कैसे पहचानेंगे, वही एउटा आधार है ना, और तो कुछ नहीं है. पहचानने के लिए चेहरा नहीं है, उसके लिए तो डीएनए टेस्ट करना एकदम जरूरी है, बहुत जरूरी.
3: तो आप करवाएंगे डीएनए टेस्ट?
4: हाँ, करवाएंगे.
3: और आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि जो यहाँ शव हैं वो हैं, या फिर आगे जो बह गए हैं उसमें हो सकते हैं?
4: हो सकता है, कुछ पता नहीं है ना, वही उसके लिए तो लापता कहते हैं ना. यहाँ पर है या नहीं है, वही रास्ते पर ये खोला में बगा रहा है, ये कुछ पता नहीं है.
3: जीजा जी को अभी जाके घर में क्या कहेंगे?
4: कहने के लिए कुछ पता ही नहीं, क्या कहेंगे, मिला नहीं.
3: वो ठीक है?
4: ठीक है.
3: उनकी तबीयत ठीक है?
4: ठीक.
3: उनको चोट आई थी?
4: नहीं.
3: आप कहाँ थे? आप बहन के साथ थे?
4: नहीं, मैं घर पर था.
3: आप घर पे थे? आप भी शाहपुर बेसी में रहते थे?
4: नहीं, मैं थोड़ी दिन पहले मैं बीमार हो गया था, इसलिए मैं घर में रेस्ट कर रहा था. उसके बाद कॉल आया, यहाँ से दीदी नहीं मिल रहा है, मैं तो बस गया हूँ. हाँ ऐसा कह के जीजा जी ने फोन किया, लेकिन उसके बाद कांटेक्ट भी नहीं हुआ है। इतना सेवन डेज हो गया है लेकिन कांटेक्ट भी नहीं हुआ।
3: आप अपना सैंपल अगर देंगे डीएनए का और जो उन्होंने रखा हुआ सैंपल तो मैच करेंगे, तो अगर आप भाई बहन हैं और मैच हुआ, क्योंकि भाई बहन का मैच होता है, तो उससे फिर आपको पता चल
4: जाएगा। वही
3: एक तरीका है
4: और कुछ नहीं है।
2: All right, on that note, let's turn our attention now to Madhya Pradesh. Vast parts of Satna, Chitrakoot, they were left inundated after heavy rain caused a swell in the Menakeni River, which rose 6 meters over the danger mark just yesterday. Vast parts of the city were left submerged with an evacuation warning issued for Ramghat as well, and the NDRF was deployed to carry out rescue operations, while many citizens were left homeless after their life savings were just washed away in the floods. Officials say that residents have been shifted to a safer location. They are being provided with food and other necessities as we speak. Listen in to this crucial reaction we've just got.
5: इस वक्त हम चित्रकूट के तरहुआ इलाके में मौजूद हैं। एक रेस्क्यू बोट है जो लोगों को सामान बांटने आई है, खाने पीने की सामग्री बांटने आई है। राजू तस्वीर दिखाएंगे सबसे पहले कि मंदाकिनी का जलस्तर कितना अधिक है, कि जो सड़कें हैं वो लबालब भरी हुई नजर आएंगी आपको, जो लोगों के घर हैं वो डूबे हुए हैं, जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं जो तैरते हुए आपको नजर आ रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग, उनके गले तक पानी यानी कि सर के पास तक पानी है, तैरते हुए लोग नजर आ रहे हैं, इतना अधिक जलस्तर है। ये निचली बस्ती है जो पूरी तरीके से मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ने की वजह से डूब चुकी है, और यहाँ पर रेस्क्यू बोट के जरिए प्रशासन जो है वो लोगों को भोजन मुहैया कराने पहुंचा है, क्योंकि यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है। ये पूरी जो सड़क है, ये अगर मेन रोड से हम देखेंगे तो मेन रोड से थोड़ी सी नीचे की सड़क है, और वहाँ से सड़क पर पूरा पानी भरा हुआ नज़र आएगा। जो इस तरीके के खाने के पैकेट्स हैं वो ले आए गए हैं, इन खाने के पैकेट्स को लोगों को बांटा जा रहा है ताकि वो किसी तरीके से खाना खा पाएं, क्योंकि कई जगहों पर न राशन बचा है और ना ही खाने की अन्य सामग्रियां बची हैं। रामघाट के पास भी जलभराव की स्थिति हो गई है, जहां पर हम मौजूद हैं तरोहा में, वहां पर भी बाकायदा आप देख रहे हैं कि जलमग्न पूरा इलाका नज़र आ रहा है। सड़कें पूरी तरीके से डूब चुकी हैं, घर जो हैं वो डूब चुके हैं, जो थोड़ा ऊँचाई पर जो जगहें बची हुई हैं सिर्फ वहीं पर पानी नहीं है। लेकिन अगर लगातार इसी तरीके से जो बारिश का दौर है पहाड़ी इलाकों में वो होती रही और मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ता रहा तो फिर वो इलाके भी डूब जाएंगे, क्योंकि कुछ ऊंचाई पर जो घर बने हुए हैं या जो टापू जैसी स्थितियां जहां पर हैं वहां पर हल्की राहत देखने को मिले, लेकिन अन्य जगहों पर पूरी तरीके से स्थिति जलमग्न नजर आ रही है।
2: All right, on that note, let's turn our attention to the latest we're tracking on NDTV this morning, with the BJP in Jammu and Kashmir announcing a secretariat gherao today to press for attention to recruitment and employment concerns. The ruling National Conference in Jammu and Kashmir has planned a counter move. The National Conference has said that it will hold a peaceful gherao of BJP offices in Srinagar and Jammu to demand accountability for the promises made by the Union Government in Parliament and before the Supreme Court with regard to Jammu and Kashmir. In fact, you must note that Sajid Yusuf, the BJP state co-media in charge, said that party leaders and workers, they will assemble at Clock Tower, Lal Chowk in Srinagar, from where they will march towards the civil secretariat. Reacting to the National Conference's move, the Leader of Opposition, Sunil Sharma, had also challenged Chief Minister Omar Abdullah to seek a fresh mandate from the people for restoration of statehood. So as the National Conference and BJP, they are set for rival protests in Jammu and Kashmir. Nazeer Masoodi joins us over the phone line. He's been tracking all the finer developments for us. Nazeer, we're given to understand to counter the protest against the Jammu and Kashmir government, Omar Abdullah's party now has a plan to gherao BJP offices?
6: Yeah, exactly. And now they are both sides are gathering, and BJP has announced to start their march from Lal Chowk, Srinagar, and then march towards the highest seat of the government in Jammu and Kashmir. And the protest, what they call backdoor appointments and corruption in the government. National Conference has hit back and they have announced the protest outside the offices of BJP in Srinagar as well as in Jammu. And National Conference has asked its MLAs and also ministers to gather in Jawahar Nagar area of Srinagar and to hold protests outside the BJP office. So it is protests versus protests. And we have seen it here that the BJP has been actually preparing for this protest for last 1 or 2 months, and finally they have decided to hold this protest. Omar Abdullah has recently, when he was asked about these backdoor appointments and

0: corruption. And he said it shows the BJP is somewhere complicit, and since the anti-corruption bureau is under the central government, not with his government, the BJP should answer about the corruption charges in Jammu and Kashmir, not his government. So there are allegations and counter-allegations, but the fact is that these two simultaneous protests, BJP holding protests outside the secretariat, starting march from large of Srinagar, and the national conference, the government actually holding a counter-protest against the BJP, reminding the BJP its promise that it has promised to restore the statehood before the Supreme Court of India and before the Parliament of India.
1: Zira, as always, thank you so much for joining us with the latest details. We'll, of course, revert to you for regular updates regarding both these protests. All right, from Jammu and Kashmir, let's turn our attention now to the national capital. There is a significant forensic development in the Delhi-Kashmiri Gate bus rape case. Police have now confirmed that fingerprints belonging to the survivor and both accused men have been found on the bus. Investigators had also seized the clothes of the driver Kuldeep and conductor Sandeep and collected forensic samples from the seats and steering wheel, we're told. The DNA report is still awaited, which could provide another important piece of evidence as investigators reconstruct what happened inside that bus. The survivor had boarded after taking a lift from Pari Chowk in Noida on the 4th of August. Police are now preparing to file the charge sheet as well. Mukesh Sengar has been tracking all the finer developments for us. He joins us over the phone line at the moment. Mukesh, to begin with, break down what the fingerprint evidence tells investigators. And police are saying the charge sheet will be filed very soon. Are they waiting specifically for the DNA report before filing the charge sheet, or do they believe that they already have sufficient evidence to proceed?
2: देखिए दिल्ली पुलिस ने जो बस थी जहां पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ था बस के अंदर उस बस की फॉरेंसिक एक्सपर्ट से जांच कराई थी जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बस की स्टेयरिंग उसके जो सीट्स हैं वहां पर और बस के कई अलग अलग हिस्सों में जो फिंगरप्रिंट के सैंपल्स हैं वो कलेक्ट किए थे और जो अभी रिपोर्ट आई है फिंगरप्रिंट की उसमें ये साफ हुआ है कि जो आरोपी एक्यूज संदीप और जो कुलदीप हैं उनके फिंगरप्रिंट बस की स्टेयरिंग में बस की सीट में विक्टिम के कपड़ों में मिले हैं इसके साथ ही पुलिस ने जो डीएनए सैंपल्स जांच के लिए भेजे थे वो डीएनए सैंपल्स की रिपोर्ट अभी अवेटेड है लेकिन डीएनए रिपोर्ट आने के पहले फिंगरप्रिंट का मिलना ये अपने आप में काफी बड़ा एविडेंस है कोर्ट में प्रूव करने के लिए कि आरोपी बस में मौजूद थे और विक्टिम भी बस के अंदर थी और आरोपी ने विक्टिम को टच किया था उसके कपड़ों में आरोपियों के फिंगरप्रिंट मिले हैं तो दिल्ली पुलिस बहुत जल्दी ही इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल करने वाली है और पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था और फिलहाल जो विक्टिम है वो अपने घर मैनपुरी में है लेकिन एक इस केस में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जिसमें ये साफ हो गया है कि बस के अंदर दोनों ही एक्यूज कुलदीप और संदीप का प्रेजेंस था दोनों बस के अंदर मौजूद थे और दोनों ने ही इस पूरे इंसिडेंट को अंजाम दिया है जी
1: Right, thank you for the confirmation, Mukesh, and sharing the latest details with us. We'll, of course, continue to track how this probe progresses. And from the national capital, now let's turn our attention to Mumbai, where a viral video is now at the center of a controversy over an alleged demand that two women remove their burqas before entering a BMC-run hospital. This incident is said to have taken place at Cooper Hospital, where the women were visiting a relative, we're told. The AIMIM Mumbai vice president was denied entry in the hospital and the party has now slammed this move, calling it a constitutional violation. For context, I must inform you, in the video, one of them, identified as advocate Zahra Sheikh, is seen objecting to what she says was a demand by a security guard to remove her burqa before entering. The security personnel reportedly cited security precautions and concerns over child theft. The incident has now taken a political turn as well, with Maharashtra Minister Nitesh Rane weighing in and defending restrictions on the burqa. He's citing concerns including bogus voting and child abduction. And Nitesh Rane has argued that India should reconsider such restrictions. AIMIM's Mumbai Vice President, though, Jehanara Sheikh, who says she was one of the women involved, says the guard told her that people wearing burqas could steal babies, believe it or not. She argues that if child security is a concern, the hospital should strengthen security around the maternity ward rather than ask women to remove their burqas. We do have political reactions lined up for you. Listen in to what played out, beginning with Jehanara Sheikh's reaction and then the political ones that follow.
3: मेरे रिलेटिव से मिलने के लिए गई मैटरनिटी वार्ड के बाहर ही मुझे वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि आप बुरखा उतारे तो अंदर जाए। मैंने उनसे वजह पूछी कि बुरखा उतारने की वजह, मैंने अपना फेस कवर नहीं करी थी, मैं ऐसे ही थी जैसा कि वीडियो में चल रहा है। मैंने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे बोले बुरखा पहन के जाते हो बच्चे चोरी हो जाते। तो मैंने उनसे सवाल करी, बच्चे चोरी होते सिर्फ बुरखे में ही बच्चे चोरी होते हैं, बच्चे चोरी होना इसमें आपका फॉल्ट है ना कि बुरखे वालियों का फॉल्ट है। एक कोई पहनावे को या कोई बुरखे को मतलब एक टारगेट करना नहीं है, मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ जब बच्चा चोरी होगा तो चोर कैसे भी बच्चा चोरी करेगा, उसमें सिक्योरिटी का फॉल्ट है, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट स्टाफ का फॉल्ट है। आप
4: इतनी नफरत कैसा फैला सकते हैं लोग, ये पूरा निंदनीय है, कंडेमनेबल है, ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन है, फ्रीडम ऑफ चॉइस का वायलेशन है। आप उसको बोलते बुरखा उतार के जाओ, हाँ, ये नफरत फैलाने वाली जुबान, ये जो बीजेपी के नफरती चिंटू आए दिन इस तरह के अनाप शनाप बकवास करते ना, उसका नतीजा ये है कि आज हॉस्पिटलों के अंदर रोक रहे हो।
5: हिजाब और बुरखा पहन के तो बहुत सारे बहुत काफ़ी बार क्राइम किया जाता है, बहुत सारे कॉपी के घटनाएं स्कूल और कॉलेजेस में रिपोर्ट किए जाते हैं, वोटिंग के वक्त बहुत सारे ऐसी घटनाएं भी आती है कि वोटिंग के वक्त बुरखा पहनने वाले हर कोई मुस्लिम महिला नहीं होती, गलत बोगस वोटिंग भी हिजाब और बुरखा पहन के हुआ होता है। वैसे ही बच्चे चुराने की क्राइम काफ़ी इंसिडेंसेस रिपोर्ट हुई हैं। और मेरा बोलना है कि अगर इस्लामिक राष्ट्रों में देशों में अगर हिजाब और अगर बुरखा को बैन किया गया होगा, जो मुस्लिम राष्ट्र है ये तो फिर हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पे बढ़ावा क्यों देना चाहिए?
6: हारिस पठान, आप क्यों अफवाहें फैला रहे हैं? जब कोई भी महिला जाती है अस्पताल में, बुरखा पहना या हिजाब पहना उससे कोई मतलब नहीं, वहां उनका इलाज करना यही सर्वप्रथम कोई भी बीएमसी हॉस्पिटल में लक्ष्य रहता है। लेकिन आपने तो ऐसे अफवाहें फैलाए हैं कि जैसे कि जात पात धर्म के आधार पे अस्पताल में एंट्री एग्जिट है। का बंद कीजिए ये तुच्छ राजनीति और फोकस कीजिए डेवलपमेंटल एजेंडा।
7: सरकारी अस्पताल में अगर कोई जाना चाहता है, इलाज के लिए जाना चाहता है, एक नोबल प्रोफेशन है वो, जहाँ सभी जाति धर्म के लोग अपने इलाज के लिए वहाँ जाते हैं, सरकार की ये जिम्मेदारी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ राजनीति इतनी ऊँचे स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने लाई है कि सरकारी यंत्रणाओं का भी दुरुपयोग राजनीति के लिए किया जा रहा है, इससे बड़ी अफसोस की बात हो नहीं सकती।
8: बिल्कुल करूंगी मैं ये, अगर ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे अगर ऐसा किसी ने किया होगा तो बहुत गलत है। देखो ये इंसानियत का पार्ट है। यहाँ पे जो मुंबई महानगर हॉस्पिटल, क्या कोई भी हॉस्पिटल में जाति धर्म भेद और पंथ उसके ऊपर नहीं होता है, जो बीमार इंसान है उसको लेना ही चाहिए। अगर ऐसा हुआ होगा किसी हमारे मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी के माध्यम से हुआ होगा तो उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होगी।
1: My colleague Sujata Dwivedi is tracking the latest details for us. She joins us live with the clarity we need at the moment. Sujata, we've just heard Jainara Sheikh saying the security guard specifically told her that babies are stolen when people wear burqas. Has the hospital officially clarified what happened? Nitesh Rane is now weighing in as well, claiming the burqas linked to bogus voting, child abduction, while the AIMIM is clearly slamming the BJP, calling them hate mongers and slamming them for their intolerance.
9: Well, certainly, and the kind of reactions that has come from several of these political leaders, it has only escalated the divide further, based right from an individual's dignity to religious freedom and its security. The hospital on one end, it has not yet clarified whether it is a part of the security protocol and the verification status that takes place usually outside of these government hospitals, or whether was it an individual call that was made by the security personnel is also a part of investigation. The Mumbai police has clarified that no such official complaint had reached them so far. And as far as the political reactions are concerned, like you mentioned, Nitesh Rane on one end is mentioning that not only child abduction and such incidents and bogus voting, but also in schools and colleges, we have seen that allowing burqa has led to incidents where copying-like incidents too have occurred. So somewhere Nitesh Rane clearly defending the incident here, but there are leaders like Waris Pathan, of course, Jahanara Sheikh, the victim who the woman in the video is a member of the same party, the AIIMM, and he says that this is clearly a way by the BJP to give such reactions and spread hatred, and they are opposing it. So at this point, it is the BJP as well as the other parties who are giving in reactions, whereas the wider question here is about does the hospital really make such such biases based on the attires, and if yes, then what exactly are the protocols needs to be specified, like Mumbai Mayor too mentioned. So of course it will be important to see whether the hospital mandated such verifications of removing burqa and then visiting somebody, and if not, then why were these women asked to do so. So it is a bigger a part of the investigation that is currently underway, and if the complaint reaches Mumbai Police, they will too carry an independent verification into this. But so far the hospital authorities are working upon this, no official statement by them yet, but yes, this entire matter has now escalated into a wider and a sharpened political divide, with such questions being raised over an individual's expression of attire and its religious choices. But over to you.
1: As always, Sujata, thanks so much for bringing the finer details to the fore. The police say no official complaint has reached them yet regarding the matter. This as the hospital is yet to officially respond. Well, on that note, we're slipping into a very quick break. But as always, the news and updates continue right here on the NDTV network. Do stay tuned to The Breakfast Show.
10: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
11: जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है. तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है.
12: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे.
13: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी. एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट.
14: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
15: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: A BMC-run hospital. In this video, one of them, identified as Advocate Zahra Sheikh, is seen objecting to what she says was a demand by a security guard to remove her burqa before entering. One of them, AIMIM leader Jehanara Sheikh, says a security guard asked her to remove her burqa, citing concerns over baby theft. She's called the demand wrong and an attack on her religious freedom as well, as AIMIM's Waris Pathan has condemned the incident, calling it a violation of constitutional and religious rights. On the other hand, you must note though, Nitesh Rane, Maharashtra minister, however, has backed restrictions on burqas in public spaces, linking them to security and crime concerns, to child abduction, to exam malpractice. And the hospital, meanwhile, has issued a show cause notice to the security guard and started staff sensitization as well. Listen in to what Jehanara Sheikh has said about her experience, followed by the political reactions we've lined up for you.
1: मेरे रिलेटिव से मिलने के लिए गई, मैटरनिटी वार्ड के बाहर ही मुझे वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि आप बुरखा उतारे तो अंदर जाए। मैंने उनसे वजह पूछी कि बुरखा उतारने की वजह, मैंने अपना फेस कवर नहीं करी थी, मैं ऐसे ही थी जैसा कि वीडियो में चल रहा है। मैंने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे बोले बुरखा पहन के जाते हो बच्चे चोरी हो जाते। तो मैंने उनसे सवाल करी, बच्चे चोरी होते सिर्फ बुरखे में ही बच्चे चोरी होते हैं, बच्चे चोरी होना इसमें आपका फॉल्ट है, ना के बुरखे वालियों का फॉल्ट है। एक कोई पहनावे को या कोई बुरखे को मतलब एक टारगेट करना नहीं है, मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ जब बच्चा चोरी होगा तो चोर कैसे भी बच्चा चोरी करेगा, उसमें सिक्योरिटी का फॉल्ट है, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट स्टाफ का फॉल्ट है। आप
2: इतनी नफरत कैसा फैला सकते हैं लोग, ये पूरा निंदनीय है, कंडेमनेबल है, ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन है, फ्रीडम ऑफ चॉइस का वायलेशन है। आप उसको बोलते बुरखा उतार के जाओ, हाँ, ये नफरत फैलाने वाली जुबान, ये जो बीजेपी के नफरती चिंटू आए दिन इस तरह के अनाप शनाप बकवास करते हैं ना, उसका नतीजा ये है कि आज हॉस्पिटलों के अंदर रोक रहे हो।
3: हिजाब और बुरखा पहन के तो काफ़ी बार क्राइम किया जाता है, बहुत सारे कॉपी के घटनाएं स्कूल और कॉलेज में रिपोर्ट किए जाते हैं। वोटिंग के वक्त बहुत सारे ऐसी घटनाएं भी आती है कि वोटिंग के वक्त बुरखा पहनने वाले हर कोई मुस्लिम महिला नहीं होती, गलत बोगस वोटिंग भी हिजाब और बुरखा पहन के हुआ होता है। वैसे ही बच्चे चुराने की क्राइम काफ़ी इंसिडेंसेस रिपोर्ट हुई हैं। और मेरा बोलना है कि अगर इस्लामिक राष्ट्रों में देशों में अगर हिजाब और अगर बुरखा को बैन किया गया होगा, जो मुस्लिम राष्ट्र है ये तो फिर हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पे बढ़ावा क्यों देना चाहिए?
4: वारिस पठान, आप क्यों अफवाहें फैला रहे हैं? जब कोई भी महिला जाती है अस्पताल में, बुरखा पहना या हिजाब पहना उससे कोई मतलब नहीं, वहाँ उनका इलाज करना यही सर्वप्रथम कोई भी बीएमसी हॉस्पिटल में लक्ष्य रहता है। लेकिन आपने तो ऐसे अफवाहें फैलाए हैं कि जैसे कि जात पात धर्म के आधार पर अस्पताल में एंट्री एग्जिट है। बंद कीजिए ये तुच्छ राजनीति और फोकस कीजिए डेवलपमेंटल एजेंडा।
5: सरकारी अस्पताल में अगर कोई जाना चाहता है, इलाज के लिए जाना चाहता है, एक नोबल प्रोफेशन है वो, जहाँ सभी जाति धर्म के लोग अपने इलाज के लिए वहाँ जाते हैं, सरकार की ये जिम्मेदारी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ राजनीति इतनी ऊंचे स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने लाई है कि सरकारी यंत्रणाओं का भी दुरुपयोग राजनीति के लिए किया जा रहा है, इससे बड़ी अफसोस की बात हो नहीं सकती।
6: बिल्कुल करूंगी मैं ये, अगर ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे अगर ऐसा किसी ने किया होगा तो बहुत गलत है। देखो ये इंसानियत का पार्ट है। यहाँ पे जो मुंबई महानगर हॉस्पिटल, क्या कोई भी हॉस्पिटल में जाति धर्म भेद और पंथ उसके ऊपर नहीं होता है, जो बीमार इंसान है उसको लेना ही चाहिए। अगर ऐसा हुआ होगा किसी हमारे मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी के माध्यम से हुआ होगा तो उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होगी।
0: ऑलराइट, ऑन दैट नोट नाउ लेट्स टर्न आवर अटेंशन टू उत्तर प्रदेश। The wait for the first full-time CEO of the Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust could end today after a selection process that began with over 5,500 applications. The search committee has submitted a panel of 3 candidates to the trust. The names on that panel have not been officially disclosed. However, former Uttar Pradesh Cadre IPS officer Rajesh Pandey and also former Bihar Cadre IPS officer Paresh Saxena, they are among the names being discussed as possible contenders. As you know, whoever's appointed will take charge of the day-to-day administration of one of India's most significant religious institutions at a time when the trust is also facing greater scrutiny over financial management. So all eyes are on today's meeting in Ayodhya. Will the trust name its first CEO today? Or will the decision take longer? Well, that's the big question. And here are the reactions you need to listen to.
7: अनन्य श्रेष्ठ तत्वा मंदिर के उत्तम व्यवस्थापन के लिए सीईओ की नियुक्ति करनी है. कल हमारे न्यास की बैठक में होगा. हम बहुत बहुत आभारी हैं इन तीनों महानुभावों के जो स्वयं अपने में अत्यंत व्यस्त होते हुए भी इस कार्य को श्रद्धापूर्वक इतना समय देकर के करते रहे और आज उसका सुफल हम लोगों को प्राप्त हुआ है. मैं भगवान श्री राम जी के कृपाशीर्वाद के रूप में इनको प्रसाद अर्पित करना चाहता हूं, उसका भी वे स्वीकार करें.
8: 5,585 से एप्लीकेशन हमें मिली तो उसकी फिर स्क्रूटनी की गई. उसमें हमने ये फैसला किया कि जो गूगल फॉर्म में 600 मार्क्स था, जो 7% के ऊपर लोग होंगे उनको ही हम कंसिडर करेंगे. तो उसकी जो फर्दर कैटेगराइजेशन की गई तो 108 लोग जो उस कैटेगरी में आए, 108 लोगों को वर्चुअल इंटरेक्शन की वीडियो कॉन्फ्रेंस से, और तकरीबन 4 दिन ये चला सिलसिला. तो उसमें से हमने 17 लोग जो हैं वो शॉर्टलिस्ट.
9: देखिए, जो राम मंदिर के सीईओ की बात है तो संपूर्ण अयोध्या, संपूर्ण संत समाज, सभी लोगों ने इसका विरोध किया है. धार्मिक समिति में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने इसका विरोध किया था कि राम मंदिर आस्था का केंद्र है, ना कि कोई बिजनेस का केंद्र है. तो और सीईओ जो होते हैं बिजनेस के केंद्र में होते हैं, आस्था के केंद्र में सीईओ की कोई आवश्यकता नहीं होती. उसके लिए धार्मिक समिति और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पर्याप्त है, राम मंदिर का संचालन सुव्यवस्थित तरीके से कर सकता है. लेकिन दुर्भाग्य है कि सब सीईओ के पीछे पड़े हुए हैं. सीईओ इसलिए पड़े हैं कि जो अभी भ्रष्टाचार हुआ, जो अभी घोटाला हुआ, सीईओ होता तो सीईओ को ट्रांसफर हटा देते और दूसरा कोई वहाँ आ जाता सीईओ के स्थान पर, मामला शांत हो जाता. आप देख सकते हैं भारत के जिन जिन मंदिरों में सीईओ है सभी जगहों पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है. इसलिए सीईओ का पुरजोर विरोध है. राम मंदिर की जो समीक्षा बैठक हर महीने होती है, हो रही है, ये प्रशंसनीय है कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसके लिए समीक्षा बैठक होती रहती है और होती रहनी चाहिए.
0: Alright, staying with updates from Uttar Pradesh, you must know that artificial intelligence has been weaponized ahead of the Uttar Pradesh election, with the ruling BJP accusing the Samajwadi Party of insulting Hindu saints with its latest video that references donation irregularities at the Ram Temple in Ayodhya and takes pot shots at Chief Minister Yogi Adityanath. The controversy began after the BJP released an AI video targeting Akhilesh Yadav, referring to him as Tipu and accusing him of corruption. Hitting back, the Samajwadi Party IT cell released a series of AI-generated videos targeting Chief Minister Yogi Adityanath and showing him smoking a chillum. Videos also reference the temple donation theft, as I mentioned, and show Chief Minister Yogi Adityanath counting cash. You know, in one video, Chief Minister Yogi Adityanath is shown dancing, as you can see, while targeting him over unemployment and paper leaks too. The BJP is slamming these videos as an insult to saints and the Sanatan tradition.
10: आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये खेल ना खेला जाए. लोकतंत्र में विचारों की लड़ाई होती है, मुद्दों की लड़ाई होती है, लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से जो भारतीय जनता पार्टी है उनके अकाउंट से आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय डिंपल यादव जी, उनके वीडियो को AI से बना के प्रचारित किया जा रहा था, दुष्प्रचार किया जा रहा था, घटिया स्तर की राजनीति की जा रही थी. समाजवादी पार्टी समझती कि केवल समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को चेताने के लिए, समझाने के लिए एक वीडियो जारी किया है. समाजवादी पार्टी इस तरह की किसी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो AI टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके जिस तरह से विपक्ष को बदनाम करना चाहती है, विपक्ष के नेताओं को बदनाम करना चाहती
11: है. Political values also, and Akhilesh Yadav now he was ex-chief minister also, and he is leading to some party, but he has, I think so, through his AI video, tarnished the values of the politics, and I don't think so, that people will forget him, because people have thousand lakhs people they have respect for any sadhu sant. And Yogi Adityanath ji, fortunately, he is a chief minister also. But he is a representing Gorakh Peeth also, where the lakhs of the people, they have respect. Now it is in only mindset of Akhilesh Yadav, ki now for any sadhu and sant, he has no respect. He has only image ki if any sadhu sant used to only chillam. I think so it is disgrace. He has disrespect for entire sadhu and sant also. And if he has some, I think so, he can oppose to government also, policies, and he can criticize. I think so people will give him, teach him lesson. Thank you.
12: कि अखिलेश जी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और 10 साल धीरे धीरे सत्ता गए हो गया, अब उनको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार नौकरी इस पे चर्चा करने के लिए इसके लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि 10 साल से नाच देख नहीं रहे हैं। जो बॉम्बई से ला करके फिल्मी सितारों को नचाते थे, अब वो देख नहीं पा रहे हैं, तो सोच रहे हैं बेचारे कि क्या करें। तो कभी बौना को नचा करके संतोष कर रहे हैं, तो कभी एआई द्वारा वीडियो बना करके उसको चला के देख के संतोष कर रहे हैं। इसके अलावा तो उनके पास कोई इशू है नहीं। और जो योगी आदित्यनाथ जी को कह रहे हैं, उनसे पहले तो वो अपने टीम में ज़रा झांक के देखें, उनकी टीम के लोग क्या कर रहे हैं।
0: Well, on that note, we're slipping into a very quick commercial break. We've got the latest updates lined up for you on the other side regarding the US-Iran conflict.

0: सुबह 100% इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके ऊपर कोर्ट भी सुपरविजन करेगी ना।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: इसके लिए
1: और 6 साल तक जिस प्रकार की प्रताड़ना इसे कह सकते हैं हुई है, जहां पर आप पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, अंततः आपको अदालत आना पड़ा, अब आपको थोड़ा सुकून लग रहा है आप और आपकी वाइफ दोनों ही?
0: सुकून नहीं, मेरे को घर पे जाके रोना है।
1: यहाँ पर इमोशनल हो गए और वो कह रहे हैं कि उन्हें बस अब घर जाकर रोना है, क्योंकि जिस प्रकार की प्रताड़ना उन्हें झेलनी पड़ी है इतने दिनों में, वो शायद ही कोई पिता झेले। और आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बड़ा जजमेंट देते हुए कहा है कि दिशा सालियान मौत मामले में एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इसके पूरी तहकीकात करेगा और CBI द्वारा अब इस पूरे मामले की आगे जाँच की जाएगी। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए।
2: All right, so that's the breaking update. We have Satheer Salian speaking to NDTV, thanking the court for the verdict and says now he will go back home to cry. Of course, this has been a long pending case. Earlier, Mumbai police was investigating and Maharashtra government before the court had defended the initial police investigation with the public prosecutor really speaking about how material and witness statements did not indicate foul play or point to homicide, maintaining it was a case of a fall from building, after which of course the father approached the court, and now this important verdict by the Bombay High Court. Let me go back to Sujata. Sujata, you know, Aditya Thackeray's name had come up in the petition. So, and, you know, counsel appearing for Aditya Thackeray had also spoken during hearing, saying that this is completely politically motivated and father is, you know, has become a tool in the hands of political rivals and so on. So those are the defense by Aditya Thackeray. So this is clearly a setback as far as a previous Maharashtra government is concerned, because it had maintained that it had done the investigation and it was nothing but an accidental death case.
1: Right. We have, like you mentioned, that there were several allegations that were come up, and we have the legal team that is representing Disha Salian in the case, his father. आपसे जानेंगे कि आज कोर्ट में सबसे पहले, क्योंकि से वर्डिक्ट आना था और बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो वर्डिक्ट सुनाया उसके बाद उनके पिता इमोशनल हो गए, रोकर वो कोर्ट को थैंक यू बोल रहे थे। स्पेसिफिकली बताइए कि कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में, अपने जजमेंट में क्या कहा है?
3: आज जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया मैडम, उसमें पहले तो पिटिशनर का स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड करो और केस जो है वो CBI को ट्रांसफ़र करो, और जो मालवनी पुलिस स्टेशन ने जो इन्वेस्टिगेशन किया था उसमें कुछ खामी थी और उसमें बहुत गलतियां थी, बहुत त्रुटि था, इसलिए वो चीज़ को उन्होंने ट्रांसफ़र किया। और ट्रांसफ़र करने के बाद ये भी बताया कि अगर कोई रिपोर्ट नेगेटिव आता है CBI का, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं प्रोटेस्ट पिटीशन के द्वारा।
1: यानी अगर इस इन्वेस्टिगेशन में, अब जब CBI द्वारा एक ऑफिसर इसमें अपॉइंट किया जाएगा, उनके द्वारा एक तहकीकात की जाएगी, अगर उसमें भी कुछ इन्हें लग रहा है कि सस्पिशियस है, डाउटफुल है, तो आप उसे भी चैलेंज कर सकते हैं।
3: यस, दैट इज प्रोटेस्ट पिटीशन।
1: ओके,
3: यस, तो प्रोटेस्ट पिटीशन के द्वारा हम उसको चैलेंज कर सकते हैं, और सीनियर इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया है CBI के।
1: इतने सारे हाई प्रोफाइल नेम्स इस पूरे मामले में, आदित्य ठाकरे, डीनो मौर्य और सूरज पांचोली, ऐसे नाम, और साथ ही से पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी एक तरीके से कहा जा रहा था। आप, क्योंकि 6 साल तक आपने दिशा सालियान के पिता के साथ समय निकाला है, सारी स्ट्रगल्स देखे हैं, क्या कुछ इसका क्रस्ट है, ज़रा वो आप बता सकें? पॉलिटिकली मोटिवेटेड लग रहा है?
3: पॉलिटिकली इसमें जो पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट है वो उनका है, वो इसमें इस मैटर को लेके अगर वो पॉलिटिकली इसमें इस मैटर को डैमेज करना चाहेंगे तो वो नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रीवेंस है ये जेन्युइन ग्रीवेंस है, एक पिता का ग्रीवेंस है, और वो 6 साल से वो इस चीज़ के लिए परेशान थे। आज जो कोर्ट ने जो निर्णय दिया उससे उनको संतुष्टि मिली और वो इमोशनल भावुक होकर कोर्ट के सामने उन्होंने हाथ भी जोड़ा और वो सेटिस्फाइड है।
1: तो अब FIR फाइनली दर्ज होगा, ADR जो अब तक 5 साल से 6 साल से जिसकी जांच चल रही थी वो ADR अब हटेगा, लेकिन कौन कौन से वो सर्कमस्टांसेस है, कौन कौन से वो पहलू हैं जिस पे आप चाह रहे हैं कि ज़्यादा स्ट्रेस हो और उस पे जांच हो?
3: कई चीज़ें हैं मैम, अभी तो उनके ही खुद रिकॉर्ड से आया है, CCTV फुटेजेस वगैरह का आप अगर नोटिंग देखेंगे तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। कल ओझा साहब जो हैं इस मैटर में काउंसिल हैं, उन्होंने जो आर्ग्यू किया वो मैटर में उन्होंने पूरा एक्सप्लेन भी किया है कोर्ट को, और सब कुछ कोर्ट के रिकॉर्ड में है। Yes.
1: कोर्ट के रिकॉर्ड में है, और आप कह रहे हैं कि जो CCTV और जो दूसरे एंगल्स है वो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, लेकिन

0: क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
4: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht. सेहतमंद हर रोज।
5: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
6: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव। दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस। व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी। योर फ्रेंड सेड ये ले ले, वी सेड मेबी नॉट। Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.

0: न्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।

0: Forget about it. It's going to be Rahul Gandhi. Burqa Rao sparks political firestorm in Mumbai. AIMIM vice president denied entry into a hospital. Party condemns it, calls it unconstitutional. Maharashtra minister backs the call to restrict hijab in public spaces, fueling another controversy. Major forensic breakthrough in the Delhi gang rape case. Police find crucial evidence inside the bus, including fingerprints linked to the accused. A major turn in the Disha Salian death case. Disha Salian, viewer, as you know, was the manager of Bollywood actor Sushant Singh Rajput. She fell from the 14th floor of a high-rise building just 6 days before Sushant Singh Rajput's own death. The Bombay High Court today, after 6 years, has ordered an FIR and a CBI probe, raising serious questions over the Mumbai police investigation that had deemed her death a suicide and the way that the case was handled. The development has triggered a fresh political attack, with the BJP targeting the then Uddhav Thackeray government. The party is asking why the government did not probe Disha's death and whether someone was being protected. The BJP now demands answers from Uddhav Thackeray, stating that the CBI probe will finally uncover the truth of Disha Salian's death. The case has been a six-year-long trail of controversy, twists and turns and investigations. Disha died in June 2020 after falling from the 14th floor of a building in Malad in Mumbai, with the police later closing the case as a suicide. The High Court has now ordered a CBI probe into the matter.
1: आदित्य ठाकरे ड्रग्स का बिजनेस करता है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इन्वेस्टिगेशन में फोन रिकॉर्ड डिनो मौर्या का उनका फोन टैपिंग किया. ये नारकोटिक्स ब्यूरो के फाइल की बात कर रहा हूँ, ये मेरे घर का रिकॉर्ड नहीं है. तो वो उसके जो छोटे छोटे बच्चों के साथ में अत्याचार वाले जो भी आरोप थे, जो भी कुछ था, वो उससे रिलेटेड वीडियो रिकॉर्डिंग प्रूफ्स स्टिंग ऑपरेशन किया था दिशा ने. वो कॉपी हैंड ओवर की उसने सुशांत सिंह राजपूत को. तो उसके बाद में उन्होंने सचिन वाजे को वगैरह लाकर प्लान करके दिशा का गैंगरेप किया, मर्डर किया. बाद में 8 तारीख को ये सब किया और फिर 9 तारीख का स्टोरी क्रिएट किया कि अरे वो ऊपर से गिर गई.
2: आखिर दिशा सालियन के परिवार को न्यायपालिका ने न्याय दे दिया. भगवान के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं है. अब मुकदमा दर्ज करके यह मामला सीबीआई को सौंपा जाए. इस प्रकार से न्यायपालिका ने दिशा के पिता को न्याय दिया है. सवाल यह उठता है कि उस दौरान की उद्धव ठाकरे सरकार किसे बचाने का प्रयास कर रही थी? रातों रात इस मामले को दबाने का प्रयास क्यों किया गया? इस बात का जवाब श्रीमान उद्धव ठाकरे समेत जिन जिन लोगों को बचाने का प्रयास किया गया, उन सबको न्यायपालिका के सामने देना होगा. अब इस सारे प्रकरण की जांच सीबीआई करेगी और मुकदमा दर्ज होगा.
0: एंड दिशाज फादर सतीश सालियान स्पोक फर्स्ट टू मी जस्ट मिनट्स आफ्टर दिस बॉम्बे हाई कोर्ट वर्डिक्ट. हियर्स व्हाट ही सेड टू मी. सतीश जी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर ऑर्डर किया है. सतीश जी, आपका कॉम्प्रिहेंसिव रिएक्शन क्या है? आपकी मांग थी कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो.
3: सही, मेरी मांग थी ऐसी और मेरे वकील की मांग थी. वो कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और सीबीआई को इंस्ट्रक्शन दे दिया, तुम इन्वेस्टिगेशन करो. हेलो,
0: आपका क्या एक्सपेक्टेशन है अभी? सतीश जी, 6 साल गुजर गए हैं, बहुत कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हुए इन्वेस्टिगेशन में. क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल हुआ था एक बार. आपने भी पहले बोला था कि आपकी बेटी की डेथ को लेकर पॉलिटिक्स ना हो. आपका क्या कहना है अभी, जब सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगा अभी, आपका क्या कहना है अभी?
3: सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगा ना, जरूर करेगा. आज अभी पहले का बात छोड़ दो, अभी के बात करो ना.
0: 6 साल के बाद आपको लगता है कि सच्चाई सामने आ सकती है इन्वेस्टिगेशन से?
3: सौ टका आना चाहिए. आ सकती है कि आएगी सच्चाई?

0: जो सच है वो सच आएगी, झूठ नहीं है।
1: और आप भी इस सवाल के जवाब देंगे इस इन्वेस्टिगेशन में, आपका भी समनिंग होगा सर, आपसे भी पूछताछ होगी, आप भी करेंगे इसमें?
0: वो मुझे पूछेगा तो मैं जवाब दूंगा।
1: आपके हिसाब से सतीश जी क्या हुआ था? क्योंकि 6 साल में हमको समझना है कि एक साइड से बोला जाता है कि ये सुइसाइड था, दूसरे साइड से आपके कहना है कि ये कॉन्स्पिरेसी है, उसको मार दिया गया है, एक कॉन्स्पिरेसी है, कुछ बड़े लोग हैं इन्वॉल्व। क्या कहना चाहेंगे आप अभी जब ये इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू होगा सीबीआई की तरफ से?
0: ये तो सुसाइड 100% नहीं है, नहीं नहीं ये सुसाइड तो नहीं है, ये कुछ है उसके अंदर कॉन्स्पिरेसी है बड़े लोग का, कुछ है उसका, सुसाइड तो नहीं है। कि आप भी बता सकते हैं, हमारा बेटी का फोटो देख के, अंतिम संस्कार का फोटो देख के आप भी बोल सकते हैं क्या है करके।
1: आप क्या आप सीधा बताइए कि आपका क्या एलिगेशन है, कौन है ये बड़े लोग जो इन्वॉल्व थे, किस टाइप का कवर अप था, सबका पूछताछ?
0: अभी तो बताने अभी नहीं बता सकता मैं,
1: सबका पूछताछ होगा।
0: हाँ सबका पूछताछ हो जाएगा,
1: तो आप किस,
0: जो भी है सच्चाई बाहर आ जाएगी।
1: तो आप किसको अक्यूज कर रहे हैं आप अभी, किस पर आरोप लगा रहे हैं आप अभी?
0: अभी फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, जो भी है वो सामने आ जाएगा आपका।
1: एक पिता होने से के तरफ से सतीश जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उस टाइम 2020 में क्या हुआ था कि ऐसे दिशा साली आपकी बेटी की डेथ हो गई थी, 6 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत का डेथ हुआ था, लोग समझना चाहते हैं कि क्या कोई लिंक था इसमें?
0: 100% लिंक था, जो उन लोगों का जो गलत काम का दिशा ने वीडियो भेजा था उसे सुशांत को भेजा था, उसके उससे लिंक है बस और कुछ नहीं।
1: और आप जो लोग आप आरोप लगा रहे हैं उन पे, उनका नाम आप लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो भी सामने आएंगे अभी, उनको सामने आना पड़ेगा अभी सीबीआई के सामने?
0: आना ही पड़ेगा, जो गलत किया गलत मिलेगा उनको,
1: आपके हिसाब से
0: तरफ से नहीं तो ऊपर वाले की तरफ से भी मिलेगा।
1: आपके हिसाब से सतीश जी ये कवर अप क्यों हुआ है? दिशा सिर्फ एक 28 ईयर ओल्ड एक मैनेजर थी, वो कुछ भी नहीं थी ऐसा बॉलीवुड के इंडस्ट्री में, ये सब करना क्यों पड़ा आपकी तरफ से, आपके हिसाब से?
0: दिशा एक खुली दिमाग की लड़की थी, उसको अन्याय बर्दाश्त नहीं हो रहा था इसलिए उसने किया।
1: कौन सा अन्याय ये तो बताइए कि कौन सा अन्याय, क्योंकि 6 साल हुए हैं सतीश जी, इसलिए हम जानना चाहते हैं।
0: वो आपका अभी आगे आ जाए, आ जाएगा यहाँ अभी नहीं, अभी आगे आ जाइए, आगे आ जाएगा।
1: तो ये आप बताइए कि किस किस का पूछताछ होना चाहिए सीबीआई की तरफ से, किस किस का पूछताछ होना चाहिए?
0: वो तो सीबीआई करेगी, मेरा मुझसे मत निकालो प्लीज।
1: नहीं मैं सिर्फ सतीश जी मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि देखिए 6 साल गुजर गए, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब जब इन्वेस्टिगेशन फिर से स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच होगा, फिर से शुरू होगा,
0: अभी 6 साल गुजर गए,
1: एक्सपेक्टेशन है
0: और 6 महीना रुको सब बाहर आ जाएगा।
1: आपको यकीन
0: जो न्याय है जो गलत किया है उनको शिक्षा देना मिलना चाहिए,
1: लेकिन आपके हिसाब से अब तक न्याय नहीं मिला है, तो आपको कैसे यकीन है कि न्याय अब मिलेगा सतीश जी?
0: अभी तो मिला ना मुझे 50% हाईकोर्ट ने बोल दिया, सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया केस को, एफआईआर मिला मुझे, अभी आगे भी हो जाएगा।
1: सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत का केस तो सुइसाइड माना गया था सर,
0: वो गलत है, गलत है।
1: आपका मानना है कि वो भी रीइन्वेस्टिगेट होना चाहिए? आप बोल रहे कि वो भी एक कॉन्स्पिरेसी है?
0: ठीक है, वो हाँ वो भी है, होना चाहिए।
1: ओके, सतीश सालियान जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए धन्यवाद। We've got breaking news coming in now. Tamil Nadu leader of the opposition, Udayanidhi Stalin, has now reacted on the Vijay government withdrawing cases against farmers and teachers, cases that had been imposed on them during protests under the DMK government. He says, one minister says, this is the first time in history cases have been withdrawn. That is not factually right. He says, during our government, headed by our leader, more than 5,000 cases were withdrawn against people who were booked for being part of protest against CAA. So there is competitive politics that has broken out now in Tamil Nadu over who has withdrawn more cases against protesters. So this is Udayanidhi Stalin. Let's just play out what he has said now.
2: ஒரு அமைச்சர் பேசும்பொழுது இதுதான் வரலாற்றிலேயே முதல் முறை வழக்குகள் வாபஸ் பெறப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. அது சரியான தகவல் அல்ல. எங்களுடைய தலைவர் எங்களுடைய ஆட்சியின் போது குடியுரிமை திருத்த சட்டம், வேளாண் சட்டம், எட்டு வழிசாலை போராட்டம், கூடன்குளம் அணு உலை, அண்ணன் அமைச்சர் அண்ணன் வன்னியரசன் சொன்னது போல கூடன்குளம் அணு உலை, ஹைட்ரேன் மீத்தேன் போராட்டம் உள்ளிட்ட போராட்டங்களில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது போடப்பட்ட 5,000 மேற்பட்ட வழக்குகளை எங்களுடைய தலைவர் முதலமைச்சராக இருக்கும்போது வாபஸ் பெற்றிருக்கிறார். ஒன்றே ஒன்று மட்டும் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். அப்பொழுது எங்களுடைய தலைவர் முதலமைச்சர் அவர்கள் 110 விதியின் கீழ் அவர் அனௌன்ஸ் பண்ணவே இல்லை. அதிகாரிகளை கூப்பிட்டு சொல்லிவிட்டு இந்த வழக்குகளை வாபஸ் சென்று இந்த அவையில் தெரிவித்து.
1: Sam Daniel joins me live from Chennai. Sam, what are you making of this, the withdrawal of the cases by the Vijay government, and Udayanidhi saying it's no big deal? You know, don't try to take credit for something like this. Withdrawal of cases against protesters have happened before. It's almost competitive now.
3: Shiv, absolutely, it is competitive politics. It could be seen in two different ways. One, it's a new government, and the chief minister is yet to really understand what are the cases in terms of dropping of cases by his government could be highlighted as something first of its kind. And it's that kind of a claim, that unprecedented word, historical word used by the chief minister, had touched a raw nerve. And Udayanidhi Stalin, the leader of opposition, immediately rose and they were up in arms, saying that even during the DMK regime, MK Stalin as chief minister had quashed cases against farmers and teachers, particularly referring to instances like the long-drawn protests against the Kudankulam power plant in southern Tamil Nadu at that point in time, and also farmers who protested against a few industrial projects in, for instance, in Thiruvannamalai district of Tamil Nadu, saying that it cannot be called first of its kind. And the larger picture, of course, it's a three-month-old government, and they want to take brownie points. And this becomes all the more important for the TVK, particularly because the message, the speeches, the proceedings from the floor of the house are streamed live. And it could be an easy way for them also to score brownie points. But the opposition has learnt its lessons. And during every such opportunity, they also come out strongly rebutting to make sure they're not seen at the receiving end.
1: Sam, thanks very much for that. I'm sure we're going to hear much more about this from both the TVK and the DMK, and that's only to be expected. Thanks very much. The Assembly is in session, so expect this story to get just a little bit hotter. We've got some breaking news coming in now. More breaking news coming in. Japanese credit rating agency, the JCRA, has upgraded India's sovereign rating from BBB plus to A minus. This comes just a couple of days after India's big GDP figures that have come out. Good news, the JCRA has upgraded India's sovereign rating from BBB plus to A minus. Gauri Dwivedi, executive editor, live with us. Gauri, break this down for us. Tell us what this means, you know, for those of us who may not fully appreciate what this exactly signifies, and tell us why this is good news.
4: Shiv, now this is extremely significant because this is an external rating agency validating India's finances, India's fiscal health, India's overall financial health getting a big validation from the credit agencies, these external credit agencies. What it does do is that the moment your credit rating improves, it allows the sovereign debt to then be accessed from global markets at

0: actually appear to slow down. So the Thar, of course, has been hauled up. There was rash driving, drunken driving, as far as the Thar driver was involved. But even the Ford Endeavour does not slow down at that crossing, which it should have done.
1: Yeah.
0: And then there's a crash between both these vehicles. The Thar collides with the Endeavour, falls onto the e-rickshaw. Those people in the e-rickshaw have been seriously injured, and they are the ones who filed the FIR. When the police go into the history of the car, they discover to their surprise that Chandana's car, which is registered in the name of his wife, has 18 challans.
1: Wow.
0: Now, how has he been able to get away with this? He's paid some challans apparently, because there were some 20 plus challans, but there are still 18 challans pending, and a lot of them are for jumping red lights. A lot of them are for rash and negligent driving and for speeding. So it's amazing, you know, this VIP culture that we see, that, you know, a minister whose the car is registered in his wife's name has so many challans pending and is not hauled up for the kind of overspeeding. The fact that these challans were pending should have anyway alerted the traffic department.
1: Very, very true. This is VIP culture front and center. Harsha, thanks for bringing this story out to national attention. You know, another case of privilege, the long arm of the law doing nothing against those with power. A former Rajasthan minister, no less. 20 challans pending, and clearly those challans were there for a reason, because this is a car that absolutely had no interest in obeying traffic rules, and three people are now fighting for their lives inside a hospital. No surprises that all of them are poor e-rickshaw operators in Jaipur. We'll keep a track of that story and get you an update from the police. There's more news coming in now. Another school horror in India's capital region, the Delhi NCR region. A class 11 girl is dead after allegedly jumping from the third floor of her school in Faridabad, which is a Haryana suburb of Delhi. Her parents are making serious allegations against a teacher, claiming that daughter was punished and made to stand for hours. The family also claims other students were beaten and publicly humiliated. A fellow parent has backed the allegations, claiming such punishments at this school in Faridabad were routine. The school, however, denies that the girl was punished. Police are now investigating the death and probing the allegations.
2: कुछ भी नहीं बताया हमको, अब बताया जब वो एक्सपायर हो गया, जब बताया हमको आ जाओ देखने के लिए, भी बच्चों से जब बस स्कूल में हमारे मिली है रास्ते में बस, तो उसी क्लास बच्चे से पूछा बेटा ऐसा कैसे उसने छत पे से कूदी, उसको चार घंटे से स्कूल वाले टीचरों ने धूम में खड़ा कर रखा था, पनिशमेंट दे रखा था किसी खाने पीने के चक्कर में,
3: पनिशमेंट दे रखा था,
2: ये लड़कियां बिरयानी खा रही थी क्लास में, उसी में आपस में लड़ रहे होंगे, झगड़ रहे होंगे खाने पीने के ऊपर, उसी में मैडम ने पनिशमेंट जैसे क्लास से बाहर निकाल दिया, बाहर खड़ी हो जाए, वो भी चार घंटे तक।
4: आपके भी बच्चे स्कूल में
5: पढ़े? मेरे चार बच्चे से स्कूल में पढ़े।
4: तो ऐसी जो पनिशमेंट है, जो अभी खबर सामने आई कि चार घंटे जो है वो धूप में खड़ा रहने के लिए बोला, तो आपके भी बच्चों को इस तरीके की
5: पनिशमेंट दी जाती थी? फीस नहीं देने पे भी दी जाती थी, अगर लेट हो जाती थी फिर चार चार घंटे खड़ा रखते थे और मार पिटाई भी करते थे उनके साथ।
4: मतलब आपके भी बच्चों को इस तरीके की पनिशमेंट, क्या क्या
5: पनिशमेंट थी? कि डंडा मारना, उनके माँ बापों को उल्टा सीधा बोलना कि तुम्हारे माहौल ही घर के यही है, तुम्हारे माँ बाप भी बदतमीज हैं, ये है वो है, इस तरीके से। मेरी लड़की ने रात सारी बातें बताई हैं मुझे कि इस वजह से वो लड़की मरी होगी।
4: तो फिर मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत एक तरीके
5: से, काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत लड़कियों के सामने, एक अकेले में बेइज्जत करना, एक चार जनों में बेइज्जत करना, ये चीज़ है। तो चार जनों में बेइज्जत करा जाता था।
4: और खासकर हम ये भी स्कूल की इमारत भी देख रहे हैं, एक तो ये मेन स्कूल है, क्या इस स्कूल में भी जो है ये जो स्कूल का जो पार्ट है, यहाँ पे छोटे बच्चों की पढ़ाई होती थी?
5: हाँ, छोटे बच्चों की पढ़ाई भी होती थी, बड़े की भी होती थी, इतना मुझे पता नहीं है 11वीं में कौन बैठता था, 12वीं में कौन बैठता था।
4: तो आप कह रही हैं कि ये जो पनिशमेंट का जो सिलसिला है वो बहुत पहले से यहाँ पर?
5: हाँ, बहुत पहले से चलता है, बहुत पहले से चलता है। जब से इनके हेड सर की बहू आई हैं, वो ज़्यादा पनिशमेंट देती हैं सबको।
6: तो तीसरी मंजिल से कहीं उसने छलांग लगा दी और उसकी मौत हो गई है। बिक्की के में उसकी यहाँ डेड बॉडी रखवाई हुई है। अभी उसकी आगे की इन्वेस्टिगेशन, ये अभी जांच का विषय है, क्या वजह रही है, अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है।
1: A politician wearing a burqa, not being allowed to enter a hospital in Mumbai, has, as you can imagine, triggered a big, big firestorm in the city. A viral video showing two women being stopped at a BMC-run Cooper Hospital in Mumbai while visiting a relative is now the big face of the story. One of them is AIMIM, that's Asaduddin Owaisi's party, an AIMIM leader, Jahanara Sheikh, wearing a burqa, who says a security guard asked her to remove

0: her burqa, citing concerns over baby theft. She has called the demand wrong and an attack on her religious freedom. AIMIM leader Waris Pathan has condemned the incident, calling it a violation of constitutional and religious rights. Maharashtra Minister Nitesh Rane, however, has backed restrictions on burqas in public spaces, linking them to security and crime concerns. The hospital has issued a show cause notice to the security guard and started a staff sensitization drive.
1: मेरे रिलेटिव से मिलने के लिए गई, मैटरनिटी वार्ड के बाहर ही मुझे वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि आप बुरखा उतारे तो अंदर जाए। मैंने उनसे वजह पूछी कि बुरखा उतारने की वजह, मैंने अपना फेस कवर नहीं करी थी, मैं ऐसे ही थी जैसा कि वीडियो में चल रहा है। मैंने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे बोला बुरखा पहन के जाते हो बच्चे चोरी हो जाते। तो मैंने उनसे सवाल करी, बच्चे चोरी होते सिर्फ बुरखे में ही बच्चे चोरी होते हैं, बच्चे चोरी होना इसमें आपका फॉल्ट है, ना के बुरखे वालियों का फॉल्ट है। एक कोई पहनावे को या कोई बुरखे को मतलब एक टारगेट करना नहीं है, मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ जब बच्चा चोरी होगा तो चोर कैसे भी बच्चा चोरी करेगा, उसमें सिक्योरिटी का फॉल्ट है, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट स्टाफ का फॉल्ट है। आप
2: इतनी नफरत कैसा फैला सकते हैं ये लोग? ये पूरा निंदनीय है, कंडेमनेबल है, ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन है, फ्रीडम ऑफ चॉइस का वायलेशन है। आप उसको बोलते बुरखा उतार के जाओ, हाँ, ये नफरत फैलाने वाली जुबान, ये जो बीजेपी के नफरती चिंटू आए दिन इस तरह के अनाप शनाप बकवास करते हैं ना, उसका नतीजा ये है कि आज हॉस्पिटलों के अंदर रोक रहे हो।
3: हिजाब और बुरखा पहन के तो बहुत सारे काफ़ी बार क्राइम किया जाता है, बहुत सारे कॉपी के घटनाएं स्कूल और कॉलेजेस में रिपोर्ट किए जाते हैं। वोटिंग के वक्त बहुत सारे ऐसी घटनाएं भी आती है कि वोटिंग के वक्त बुरखा पहनने वाले हर कोई मुस्लिम महिला नहीं होती, गलत बोगस वोटिंग भी हिजाब और बुरखा पहन के हुआ होता है। वैसे ही बच्चे चुराने की क्राइम काफ़ी इंसिडेंसेस रिपोर्ट हुई हैं। और मेरा बोलना है कि अगर इस्लामिक राष्ट्रों में देशों में अगर हिजाब और अगर बुरखा को बैन किया गया होगा, जो मुस्लिम राष्ट्र है ये तो फिर हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पे बढ़ावा क्यों देना चाहिए?
4: वारिस पठान, आप क्यों अफवाहें फैला रहे हैं? जब कोई भी महिला जाती है अस्पताल में, बुरखा पहना या हिजाब पहना उससे कोई मतलब नहीं, वहाँ उनका इलाज करना यही सर्वप्रथम कोई भी बीएमसी हॉस्पिटल में लक्ष्य रहता है। लेकिन आपने तो ऐसे अफवाहें फैलाए हैं कि जैसे कि जात पात धर्म के आधार पे अस्पताल में एंट्री एग्जिट है। तो बंद कीजिए ये तुच्छ राजनीति और फोकस कीजिए डेवलपमेंटल एजेंडा।
5: सरकारी अस्पताल में अगर कोई जाना चाहता है, इलाज के लिए जाना चाहता है, एक नोबल प्रोफेशन है वो, जहाँ सभी जाति धर्म के लोग अपने इलाज के लिए वहाँ जाते हैं, सरकार की ये जिम्मेदारी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ राजनीति इतनी ऊँचे स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने लाई है कि सरकारी यंत्रणाओं का भी दुरुपयोग राजनीति के लिए किया जा रहा है, इससे बड़ी अफसोस की बात हो नहीं सकती।
6: बिल्कुल करूंगी मैं ये, अगर ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे अगर ऐसा किसी ने किया होगा तो बहुत गलत है। देखो ये इंसानियत का पार्ट है। यहाँ पे जो मुंबई महानगर हॉस्पिटल, क्या कोई भी हॉस्पिटल में जाति धर्म भेद और पंथ उसके ऊपर नहीं होता है, जो बीमार इंसान है उसको लेना ही चाहिए। अगर ऐसा हुआ होगा किसी हमारे मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी के माध्यम से हुआ होगा तो उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होगी।
0: Crumbling infrastructure is once again under the spotlight, this time in Uttar Pradesh, as heavy rain exposes the vulnerability of roads across the state. Remember, elections are coming in just a few months from now. In Kanpur, a road caved in following heavy rainfall, raising questions over road quality, drainage and monsoon preparedness. And in the capital of the state, Lucknow, a road collapsed with a bike plunging into a pit. Just look at these pictures. The incidents have sparked fresh concerns over the condition of roads and whether civic infrastructure in our cities is equipped to handle heavy monsoon showers. That, of course, is a rhetorical question, as these stories attest.
7: लखनऊ विश्वविद्यालय से आईटी चौराहे की तरफ जाने वाले रास्ते पे सड़क धसी है, दुर्घटना हुई है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये बीच सड़क में हुआ गड्ढा है, आईटी चौराहे से पहले जो ये मुख्य रास्ता है वहाँ सड़क धसी है। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का आवाज भी ठीक इसके सामने है। ये 10 फीट के आसपास गहरा गड्ढा यहाँ पर हुआ था, आप देखेंगे यहाँ पर गहराई सड़क में दिखाई दे रही है, गड्ढा है यहाँ पर। इस गड्ढे में एक बाइक गिरी थी, दो लोग सवार थे, जो बाइक चला रहा था वो घायल हुआ और एक उसके साथ और व्यक्ति था। घायल को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। स्थानीय लोगों ने उसे

0: बाहर निकाला और अस्पताल भेजा। अब आप देखेंगे इस समय इस गड्ढे को पाटने का सिलसिला जारी है। एलडीए और लखनऊ नगर निगम की टीमें पहुंची हैं, मलबा पहुंचाया गया है और गड्ढे में डाला जा रहा है। तो भारी बारिश का असर है लखनऊ में, अलग अलग जगहों पर गड्ढों की समस्या है और मुख्य शहर के अंदर लखनऊ के बीच सड़क में बारिश के बाद एक बड़ा गड्ढा हो जाता है जिसमें एक बाइक गिरती है और व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं।
1: कल हम लोग रात को आ रहे थे, काफ़ी तेज बारिश हो रही थी, एक बैरियर थोड़ा हटा था, ठीक है, और बैरियर की वजह से बैरियर हटा था इसीलिए पानी तेज बरस रहा था, तो हम लोग ने गड्ढा देखा नहीं, इतना बड़ा गड्ढा था और हम लोग उसी में लड़के गिर गए। मेरा भाई बेहोश हो गया था, हम तो गड्ढे में ही पड़े थे, हमको किसी ने निकाला, फिर अपने छोटे भाई को होश उसमें लिया। मैं था, मेरा छोटा भाई था।
2: अच्छा, तो कितनी देर कोई पुलिस वुलिस वाले आए थे?
1: हाँ आए थे, 10-15 मिनट बाद आए थे, आ गए थे।
2: चोट कैसे लगी आपको?
1: चोट हम लोग गाड़ी से ही, तो इसे यहीं तो चोट लगी है।
3: And that's the reason why NDTV continues its campaign of Our Cities, Our Fight. You will forget that biker you just heard from, but the campaign for safer and more accountable cities will continue right here on this network. Moving on, the wait for Ayodhya's Ram Temple's first CEO may be over. The search committee's report on the temple's first ever CEO has been submitted and it lands before the Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust today. Over 5,500 applicants for the post after weeks of tests and interviews, it's down to just three names. Former UP Cadre IPS officers Rajesh Pandey and former Bihar Cadre IPS officer Paresh Saxena among the front runners. With the trust meeting today, all eyes are on Ayodhya and whether the names of the new CEOs or at least a down-selected list will be announced today.
4: अनन्य श्रेष्ठतम मंदिर के उत्तम व्यवस्थापन के लिए CEO की नियुक्ति करनी है, कल हमारे न्यास की बैठक में होगा। हम बहुत बहुत आभारी हैं इन तीनों महानुभावों के, जो स्वयं अपने में अत्यंत व्यस्त होते हुए भी इस कार्य को श्रद्धापूर्वक इतना समय देकर के करते रहे और आज उसका सुफल हम लोगों को प्राप्त हुआ है। मैं भगवान श्री राम जी के कृपाशीर्वाद के रूप में इनको प्रसाद अर्पित करना चाहता हूं, उसका भी वे स्वीकार करें।
5: 5,585 एप्लीकेशन हमें मिली तो उसकी फिर स्क्रूटनी की गई। उसमें हमने ये फैसला किया कि जो गूगल फॉर्म में 600 मार्क्स था, जो 7% के ऊपर लोग होंगे उनको ही हम कंसिडर करेंगे, तो उसकी जो फर्दर कैटेगराइजेशन की गई तो 108 लोग जो उस कैटेगरी में आए, 108 लोगों को वर्चुअल इंटरेक्शन की वीडियो कॉन्फ्रेंस से, और तकरीबन 4 दिन ये चला सिलसिला, तो उसमें से हमने 17 लोग जो हैं वो शॉर्टलिस्ट।
6: देखिए, जो राम मंदिर के सीईओ की बात है तो संपूर्ण अयोध्या, संपूर्ण संत समाज, सभी लोगों ने इसका विरोध किया है। धार्मिक समिति में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने इसका विरोध किया था कि राम मंदिर आस्था का केंद्र है, ना कि कोई बिजनेस का केंद्र है। तो और सीईओ जो होते हैं बिजनेस के केंद्र में होते हैं, आस्था के केंद्र में सीईओ की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसके लिए धार्मिक समिति और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पर्याप्त है, राम मंदिर का संचालन सुव्यवस्थित तरीके से कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि सब सीईओ के पीछे पड़े हुए हैं। सीईओ इसलिए पड़े हैं कि जो अभी भ्रष्टाचार हुआ, जो अभी घोटाला हुआ, सीईओ होता तो सीईओ को ट्रांसफर हटा देते और दूसरा कोई वहां आ जाता, सीईओ के सामने मामला शांत हो जाता। आप देख सकते हैं भारत के जिन जिन मंदिरों में सीईओ है सभी जगहों पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो इसलिए सीईओ का पुरजोर विरोध है। राम मंदिर की जो समीक्षा बैठक हर महीने होती है, हो रही है, ये प्रशंसनीय है कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसके लिए समीक्षा बैठक होती रहती है और होती रहनी चाहिए।
3: And political heat is rising in Jammu and Kashmir with the BJP hitting the streets against the Omar Abdullah government. The BJP is targeting the government over alleged corruption, governance failures and unemployment, asking where are the jobs promised to the youth. Omar's party has hit back with a counter protest, turning its fire on the center. The National Conference is demanding the restoration of Jammu and Kashmir's statehood and questioning the delay in fulfilling that promise.
7: Well, BJP march from Lal Chowk to Civil Secretariat Srinagar was stopped at Jahangir Chowk. Hundreds of BJP protesters were shouting slogans against Omar Abdullah government, but at Jahangir Chowk they were stopped and they were pushed back to Lal Chowk again. Now, as you can see, these workers, they talk about merit का कत्ल बंद करो, करप्शन का हिसाब दो, 200 फी यूनिट्स विच प्रोमिस मेड बाई उमर अब्दुल्ला एंड पावर इज बेसिक नॉट ए लक्जरी एंड दे आर एक्चुअली आस्किंग रोल यू नो दे आर सेइंग रोल बैक द पावर हाइक ऑल्सो प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्रोटेस्ट बाई बीजेपी वर्सेज नेशनल कॉन्फ्रेंस हियर इन श्रीनगर. वन, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट वट दे कॉल बैकडोर अपॉइंटमेंट्स एंड करप्शन. सेकेंड, प्रोटेस्टिंग फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ 370 एंड स्टेटहुड.
8: Protest versus protest politics has started here in Jammu and Kashmir to counter protest by Bharatiya Janata Party. You can see national counter conference has also started a counter protest. They are trying to grow BJP office both in Jammu as well as in Kashmir. They are trying to remind BJP of not fulfilling their promise of giving statehood to Jammu and Kashmir. And that's one of the reasons that you can see they're holding placards in their hand. BJP failed to raise the voice of people of Jammu and Kashmir. The protest demonstration continued and they are moving towards fast. They are moving towards right now towards the BJP office. They are trying to get out this BJP office. And here you can see the protest versus protest demonstration continuing. And here right now the national conference steadily moving towards the BJP office. Just few meters away from the BJP office, they are raising slogans against the BJP. And here the protest demonstration is continuing. And here they are trying to get out office. Protest demonstration here is continuing. And here you can see the protest versus protest demonstration is on. Pradeep Datta with Neeraj Kumar for NDTV.
3: We've got much more coming up on the other side of this very short break. Stay with NDTV.

0: In Telangana, political temperature has gone up. We reported yesterday that how BJP and Congress workers clashed in Nalgonda in Hyderabad. And here in Telangana, in Hyderabad, BRS working president, now KT Ramarao, he has launched sharp attack on Congress government. Remember, Congress government has completed its 1,000th day in office in Telangana on September 1st. And while Congress government has claimed that their government is a welfare government, they are implementing all the welfares and all the promises which they made during the poll, they are fulfilling it. On the very other hand, BRS has today, they have launched a charge sheet alleging that Congress has not fulfilled promises. On the very other hand, BRS, apart from BRS, BJP is also making similar kind of allegation. In fact, there was a protest outside BJP office in Hyderabad, which led to an attack by BJP workers in Congress minister's house in Nalgonda in retaliation. That's the allegation made by BJP workers, that in retaliation because they held a protest outside the minister's house in Nalgonda, Congress workers vandalized the house of BJP district president in Nalgonda. That particular incident has triggered a fierce counterclaim between BJP and Congress. In fact, BJP national president Nitin Naveen has also intervened. He has spoken to the state unit president Ramchandra Rao, who was detained by the Hyderabad police when he was trying to visit to Nalgonda. That was the development which happened yesterday. Today, KT Ramarao, working president of BRS, he has now held a press conference. He releases a charge sheet against Revanth Reddy government, alleging that Revanth Reddy government or Congress government in Telangana, they have failed to fulfill their promises which they made during the poll campaign. Listening to what KT Ramarao has said while speaking to NDTV.
1: आदमी चिचोरा है तो चिचोरा ही बात करेगा, और क्या बात करेगा। ऐसे आदमी से तो कोई और उम्मीद तो की नहीं जा सकती। मैं बस इतना ही कहूँगा रेवंत रेड्डी जी से कि रेवंत रेड्डी जी, आप एक अच्छे ऊंचे पद पे बैठे हो, उसका इज्जत करना भी सीखिए, उसके हिसाब से बोलना भी सीखिए। बोलना तो हमको भी आता है, हम आप तो एक भाषा बोलते हो, हम 3-4 भाषा बोल लेते हैं, आपसे भी कस के बोल सकते हैं। इतना ही कहूँगा कि आपको सत्ता संभालने के लिए दिया गया था, हुकूमत दिया गया था जनता की तरफ से, तो कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए। चीफ मिनिस्टर वॉज इंडल्जिंग इन सम इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। जहाँ तक मेरी समझ है, ये है कि चीफ मिनिस्टर ने अपने भाई की कंपनी के लिए वहाँ किसी के साथ सौदा करने की कोशिश की, इसीलिए उनको रोका गया था। इसको अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आके बाहर आके बता दें कि कौन सी कंपनी के साथ डील कर रहे थे, क्या हुआ और किस वजह से उनको रिजेक्ट करना पड़ा, तो और भी अच्छा होगा, और चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देने पर मजबूर करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जो बार बार चीखते रहती है, चिल्लाते रहती है कांग्रेस के करप्शन के बारे में, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, चीफ मिनिस्टर ने क्या इनअप्रोप्रिएट किया कि आपने उनको रोका? किस कंपनी के साथ सौदा कर रहे थे, कौन भाई के लिए डील कर रहे थे, बता दीजिए, ताकि कम से कम जनता को पता चलेगा। इस्तीफा तो देंगे नहीं देंगे वो तो अपनी

आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। अ सेकंड चेंजेस एवरीथिंग, अ मिनट मूव्स अ नेशन, एन आवर बिकम्स हिस्ट्री फॉर थ्री डेकेड्स। एनडीटीवी हैज बीन देयर for the moments that were unstoppable, unmissable, unforgettable. Today, the moment is ours. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: और फोकस कीजिए एक डेवलपमेंटल एजेंडा।
1: सरकारी अस्पताल में अगर कोई जाना चाहता है, इलाज के लिए जाना चाहता है, एक नोबल प्रोफेशन है वो, जहाँ सभी जाति धर्म के लोग अपने इलाज के लिए वहाँ जाते हैं। सरकार की ये जिम्मेदारी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ राजनीति इतनी ऊँचे स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने लाई है कि सरकारी यंत्रणाओं का भी दुरुपयोग राजनीति के लिए किया जा रहा है। इससे बड़ी अफसोस की बात हो नहीं सकती।
2: बिल्कुल करूंगी मैं ये। अगर ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे अगर ऐसा किसी ने किया होगा तो बहुत गलत है। देखो ये इंसानियत का पार्ट है। यहाँ पे जो मुंबई महानगर हॉस्पिटल, क्या कोई भी हॉस्पिटल में जाति धर्म भेद और पंथ उसके ऊपर नहीं होता है। जो बीमार इंसान है उसको लेना ही चाहिए। अगर ऐसा हुआ होगा किसी हमारे मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी के माध्यम से हुआ होगा तो उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होगी।
3: All right, there's been a development in Sushant Singh Rajput's manager Disha Salian's death case. The Bombay High Court has now ordered an FIR and a CBI probe, raising fresh questions over the Mumbai police investigation and handling of the case. The ruling triggered a political attack, with the BJP targeting the then Uddhav Thackeray government, questioning why the death was not independently probed and whether anyone was being protected. Now remember, Disha Salian died in June 2020 after she fell from the 14th floor of a building. The police later closed the case as suicide, but then 6 years on, the High Court ordered a CBI probe. Disha's father, Satish Salian, spoke to NDTV saying he has faith that the truth will emerge.
4: आदित्य ठाकरे ड्रग्स का बिजनेस करता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इन्वेस्टिगेशन में फोन रिकॉर्ड डिनो मौर्या का उनका फ़ोन टैपिंग किया। ये नारकोटिक्स ब्यूरो के फाइल की बात कर रहा हूँ, ये मेरे घर का रिकॉर्ड नहीं है। तो वो उसके जो छोटे छोटे बच्चों के साथ में अत्याचार वाले जो भी आरोप थे, जो भी कुछ था, वो उससे रिलेटेड वीडियो रिकॉर्डिंग प्रूफ्स स्टिंग ऑपरेशन किया था दिशा ने। वो कॉपी हैंड ओवर की उसने सुशांत सिंह राजपूत को। तो उसके बाद में उन्होंने सचिन वाजे को वगैरह लाकर प्लान करके दिशा का गैंगरेप किया, मर्डर किया, बाद में 8 तारीख को ये सब किया और फिर 9 तारीख का स्टोरी क्रिएट किया कि अरे वो ऊपर से गिर गई।
5: आखिर दिशा सालियन के परिवार को न्यायपालिका ने न्याय दे दिया। भगवान के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं है। अब मुकदमा दर्ज करके यह मामला सीबीआई को सौंपा जाए। इस प्रकार से न्यायपालिका ने दिशा के पिता को न्याय दिया है। सवाल यह उठता है कि उस दौरान की उद्धव ठाकरे सरकार किसे बचाने का प्रयास कर रही थी? रातों रात इस मामले को दबाने का प्रयास क्यों किया गया? इस बात का जवाब श्रीमान उद्धव ठाकरे समेत जिन जिन लोगों को बचाने का प्रयास किया गया उन सबको न्यायपालिका के सामने देना होगा। अब इस सारे प्रकरण की जांच सीबीआई करेगी और मुकदमा दर्ज होगा।
3: All right, so now the Disha Salian death case will be handed over to the CBI. NDTV's Shivarur spoke to Disha Salian's father, who said that he is hopeful that the truth in his daughter's death will finally emerge.
6: सतीश जी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है,
7: बोलो,
6: रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर ऑर्डर किया है। सतीश जी, आपका कॉम्प्रिहेंसिव रिएक्शन क्या है? आपकी मांग थी कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो।
7: सही, मेरी मांग थी ऐसी और मेरे वकील की मांग थी, वो कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और सीबीआई को इंस्ट्रक्शन दे दिया तुम इन्वेस्टिगेशन करो। हेलो,
6: आपका क्या एक्सपेक्टेशन है अभी? सतीश जी, 6 साल गुजर गए हैं, बहुत कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हुए इन्वेस्टिगेशन में, क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल हुआ था एक बार, आपने भी पहले बोला था कि आपकी बेटी के डेथ को लेकर पॉलिटिक्स ना हो। आपका क्या कहना है अभी, जब सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगा अभी, आपका क्या कहना है अभी?
7: सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगा ना, जरूर करेगा। आज अभी पहले का बात छोड़ दो, अभी की बात करो ना।
6: 6 साल के बाद आपको लगता है कि सच्चाई सामने आ सकती है इन्वेस्टिगेशन से?
7: सौ टका आना चाहिए, आ सकती है कि आएगी सच्चाई?

0: जो सच्चा है वो सच्चा आएगी, झूठ नहीं है।
1: और आप भी इस सवाल के जवाब देंगे इस इन्वेस्टिगेशन में, आपका भी समनिंग होगा सर, आपसे भी पूछताछ होगी, आप भी करेंगे इसमें?
0: वो मुझे पूछेगा तो मैं जवाब दूंगा।
1: आपके हिसाब से सतीश जी क्या हुआ था? क्योंकि 6 साल में हमको समझना है कि एक साइड से बोला जाता है कि ये सुइसाइड था, दूसरे साइड से आपके कहना है कि ये कॉन्स्पिरेसी है, उसको मार दिया गया है, ये कॉन्स्पिरेसी है, कुछ बड़े लोग हैं इन्वॉल्व। क्या कहना चाहेंगे आप अभी जब ये इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू होगा सीबीआई की तरफ से?
0: ये तो सुसाइड 100% नहीं है, नहीं, ये सुसाइड तो नहीं है, ये कुछ है उसके अंदर, कॉम्प्रेसी है बड़े लोग का, कुछ है उसका, सुसाइड तो नहीं है। कि आप भी बता सकते हैं, हमारा बेटी का फ़ोटो देख के, अंतिम संस्कार का फ़ोटो देख के आप भी बोल सकते हैं क्या है करके।
1: आप क्या, आप सीधा बताइए कि आपका क्या एलिगेशन है, कौन है ये बड़े लोग जो इन्वॉल्व थे, किस टाइप का कवरअप था, सबका पूछताछ
0: है? अभी तो बताने अभी नहीं बता सकता मैं,
1: सबका पूछताछ होगा।
0: हाँ, सबका पूछताछ हो जाएगा।
1: तो आप किस,
0: जो भी है सच्चाई बाहर आ जाएगी।
1: तो आप किसको अक्यूज कर रहे हैं आप अभी, किस पर आरोप लगा रहे हैं आप अभी?
0: अभी फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं बोल सकता, जो भी है वो सामने आ जाएगा आपका।
1: एक पिता होने से के तरफ से सतीश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उस टाइम 2020 में क्या हुआ था कि ऐसे दिशा साली, आपकी बेटी की डेथ हो गई थी, 6 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत का डेथ हुआ था, लोग समझना चाहते हैं कि क्या कोई लिंक था इसमें?
0: 100% लिंक था, जो उन लोगों का जो गलत काम का दिशा ने वीडियो भेजा था उससे सुशांत को भेजा था, उसके उससे लिंक है बस, और कुछ नहीं।
1: और आप जो लोग आप आरोप लगा रहे हैं उन पे, उनका नाम आप लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो भी सामने आएंगे अभी, उनको सामने आना पड़ेगा अभी सीबीआई के सामने?
0: आना ही पड़ेगा, जो गलत किया गलत मिलेगा उनको,
1: आपके हिसाब से
0: तरफ से नहीं तो ऊपर वाले की तरफ से भी मिलेगा।
1: आपके हिसाब से सतीश जी ये कवर अप क्यों हुआ है? दिशा सिर्फ एक 28 ईयर ओल्ड एक मैनेजर थी, वो कुछ भी नहीं थी ऐसा बॉलीवुड के इंडस्ट्री में, तो ये सब करना क्यों पड़ा आपकी तरफ से, आपके हिसाब से?
0: दिशा एक खुली दिमाग की लड़की थी, उसको अन्याय बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने किया।
1: कौन सा अन्याय, ये तो बताइए कि कौन सा अन्याय, क्योंकि 6 साल हुए हैं सतीश जी, इसलिए हम जानना चाहते हैं।
0: वो आपको अभी आगे आ जाएगा यहाँ, अभी नहीं, अभी आगे आ जाइए, आगे आ जाएगा।
1: तो ये आप बताइए कि किस किस का पूछताछ होना चाहिए सीबीआई की तरफ से, किस किस का पूछताछ होना चाहिए?
0: वो तो सीबीआई करेगी, मेरा मुझसे मत निकालो प्लीज।
1: नहीं, मैं सिर्फ सतीश जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि देखिए 6 साल गुजर गए हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब जब इन्वेस्टिगेशन फिर से स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच होगा, फिर से शुरू होगा,
0: अभी 6 साल गुजर गए,
1: एक्सपेक्टेशन है
0: और 6 महीना रुको सब बाहर आ जाएगा।
1: आपको यकीन,
0: जो न्याय है, जो गलत किया है उनको शिक्षा देना मिलना चाहिए,
1: लेकिन आपके हिसाब से अब तक न्याय नहीं मिला है, तो आपको कैसे यकीन है कि न्याय अब मिलेगा सतीश जी?
0: अभी तो मिला ना मुझे, 50% हाईकोर्ट ने बोल दिया, सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया केस को, एफआईआर मिला मुझे, अभी आगे भी हो जाएगा।
1: सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत का केस तो सुइसाइड माना गया था सर,
0: वो गलत है, गलत है।
1: आपका मानना है कि वो भी रीइन्वेस्टिगेट होना चाहिए? आप बोल रहे कि वो भी एक

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: Shifting our focus to other big news, a major turn in Sushant Singh Rajput's manager Disha Salian's death case. The Bombay High Court has now ordered an FIR and a CBI probe, raising fresh questions over the Mumbai police investigation and the handling of the case. The ruling has triggered a political attack, with the Bharatiya Janata Party targeting the then Uddhav Thackeray government, questioning why the death was not independently probed and whether anyone was being protected or not. Disha Salian died in June 2020 after falling from a 14th floor building. The police later closed the case as suicide. 6 years on, the Bombay High Court has now ordered a CBI probe. Disha's father, Satish Salian, exclusively spoke to NDTV and said that he has faith that the truth will emerge. He maintains his daughter did not die by suicide and alleges powerful people were behind her death.
1: आदित्य ठाकरे ड्रग्स का बिजनेस करता है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इन्वेस्टिगेशन में फोन रिकॉर्ड डिनो मोरिया का उनका फोन टैपिंग किया. ये नारकोटिक्स ब्यूरो के फाइल की बात कर रहा हूँ, ये मेरे घर का रिकॉर्ड नहीं है. तो वो उसके जो छोटे छोटे बच्चों के साथ में अत्याचार वाले जो भी आरोप थे, जो भी कुछ था, वो उससे रिलेटेड वीडियो रिकॉर्डिंग प्रूफ्स स्टिंग ऑपरेशन किया था दिशा ने. वो कॉपी हैंड ओवर की उसने सुशांत सिंह राजपूत को. तो उसके बाद में उन्होंने सचिन वाजे को वगैरह लाकर प्लान करके दिशा का गैंगरेप किया, मर्डर किया. बाद में 8 तारीख को ये सब किया और फिर 9 तारीख का स्टोरी क्रिएट किया कि अरे वो ऊपर से गिर गई.
2: आखिर दिशा सालिन के परिवार को न्यायपालिका ने न्याय दे दिया. भगवान के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं है. अब मुकदमा दर्ज करके यह मामला सीबीआई को सौंपा जाए. इस प्रकार से न्यायपालिका ने दिशा के पिता को न्याय दिया है. सवाल यह उठता है कि उस दौरान की उद्धव ठाकरे सरकार किसे बचाने का प्रयास कर रही थी? रातों रात इस मामले को दबाने का प्रयास क्यों किया गया? इस बात का जवाब श्रीमान उद्धव ठाकरे समेत जिन जिन लोगों को बचाने का प्रयास किया गया उन सबको न्यायपालिका के सामने देना होगा. अब इस सारे प्रकरण की जांच सीबीआई करेगी और मुकदमा दर्ज होगा.
0: 6 years later, the case has now been given to the CBI and the Bombay High Court was also asked to file an FIR. Even an FIR wasn't filed back then. It's been 6 years. But let's now give you a lowdown of what this case is and all that you need to know about the Disha Salian case so far. It all happened in June 8th, 6 years ago, where she died after falling from a Mumbai high-rise. The family alleges foul play. The family has also been seeking for a fresh probe. However, police say that there has been no FIR which was registered initially on her death. The SIT has found no foul play so far. And after 6 long years, the Bombay High Court has questioned the probe. That's why they've handed it over to the CBI and also questioned the FIR delay. Now, the Bombay High Court has ordered the CBI probe in this case. Meanwhile, Uddhav Thackeray, Uddhav faction leader Sanjay Raut, dodged all questions on the Bombay High Court order. Here's that sequence.
3: सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट करने बोला सर बॉम्बे हाईकोर्ट
0: ने. With 6 years on, as questions mount over the investigation, NDTV spoke exclusively to Disha Salian's father, who has been seeking answers for years. Here's what he said.
4: सतीश जी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है.
5: बोलो.
4: रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर ऑर्डर किया है. सतीश जी, आपका कॉम्प्रिहेंसिव रिएक्शन क्या है? आपकी मांग थी कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो.
6: सही, मेरी मांग थी ऐसी और मेरे वकील की मांग थी. वो कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और सीबीआई को इंस्ट्रक्शन दे दिया, तुम इन्वेस्टिगेशन करो. हेलो,
4: आपका क्या एक्सपेक्टेशन है अभी? सतीश जी, 6 साल गुजर गए हैं, बहुत कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हुए इन्वेस्टिगेशन में. क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल हुआ था एक बार. आपने भी पहले बोला था कि आपकी बेटी की डेथ को लेकर पॉलिटिक्स ना हो. आपका क्या कहना है अभी, जब सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगा अभी, आपका क्या कहना है अभी?
6: सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगा ना, जरूर करेगा। अभी पहले का बात छोड़ दो, अभी के बात करो ना।
4: 6 साल के बाद आपको लगता है कि सच्चाई सामने आ सकती है इन्वेस्टिगेशन से?
6: सौ टक आना चाहिए, आ सकती है कि आएगी सच्चाई, जो सच्चा है वो सच्चा आएगी, झूठ नहीं है।
4: और आप भी सवाल के जवाब देंगे इस इन्वेस्टिगेशन में, आपका भी समनिंग होगा सर, आपसे भी पूछताछ होगी, आप भी करेंगे इसमें?
6: मुझे पूछेगा तो मैं जवाब दूंगा।
4: आपके हिसाब से सतीश जी क्या हुआ था, क्योंकि 6 साल में हमको समझना है कि एक साइड से बोला जाता है कि ये सुइसाइड था, दूसरे साइड से आपके कहना है कि ये कॉन्स्पिरेसी है, उसको मार दिया गया है, ये कॉन्स्पिरेसी है, कुछ बड़े लोग हैं इन्वॉल्व। क्या कहना चाहेंगे आप अभी जब ये इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू होगा सीबीआई की तरफ से?
6: ये तो सुसाइड 100% नहीं है, नहीं नहीं, ये सुसाइड तो नहीं है, ये कुछ है उसके अंदर, कॉन्स्पिरेसी है बड़े लोग का, कुछ है उसका, सुसाइड तो नहीं है। कि आप भी बता सकते हैं, हमारा बेटी का फोटो देख के, अंतिम संस्कार का फोटो देख के आप भी बोल सकते हैं क्या है करके।
0: And that's all that we could pack for you in today's edition of Prime 5, where we track all the stories that matter. Slipping into a very short break, but come right back. Coming up next is

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, everyday.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, everyday.

0: that comparison is completely wrong, Himanshu.
1: That's right. And in fact, Rahesha, he is the second important representative of the Modi government to actually reject the assertions, the arguments made by former Foreign Secretary S.T. Garg. And in fact, a couple of hours earlier, we have reported Commerce Minister Piyush Goyal actually strongly indicting all the allegations that have been leveled against the new GDP data. And in fact, he went on to say that S.T. Garg and the former RBI governor and other opposition parties actually are trying to mislead the country on this very sensitive issue. And we should not forget the fact
0: that
1: while there have been issues and questions being...
0: Right, Himanshu, I'm afraid we're running out of time, but thanks very much, Himanshu and Gauri, for debunking all those allegations. Like Prime Minister Modi said, that the doomsayers will perhaps be doomed. Shifting our focus to other breaking news that we're tracking for you here on the show. Prime Minister Modi has now dropped a new reel, and that is on Indian avocado. Prime Minister Modi says Indian avocado, they are getting perhaps very popular. Prime Minister says Indian avocado making toast tastier. Prime Minister Modi releases new reel on the fruit and he claims that Indian avocado are perhaps getting popular, not just here in India, but all across the world.
2: Andhra Pradesh mein Kalpa ke वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं। नई फसल, वैज्ञानिक सलाह और सीधी मार्केटिंग से उनके छोटे से फार्म की कमाई पूरी तरह बदल गई है। हम शहरों के रेस्टोरेंट में अक्सर एवोकाडो टोस्ट के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसी एवोकाडो के जरिए हमारे इनोवेटिव किसानों ने कमाई की एक नई रेसिपी ढूंढ ली है। यानी अपने देश के एवोकाडो से आपके टोस्ट का स्वाद भी बढ़ा और किसानों

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर, जेके टायर।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
4: देश का टायर जेके टायर।
5: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन ना बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब ना बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
2: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.
3: Across the country,
2: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change.

0: What tushtikaran?
1: Okay. Great. So what's happening in Bhavana? Why can't it happen in Kerala? I'm so happy you quoted that example of Bhavana because it's terrible to ghettoize any community and say women of that community should be kept in a box to keep them safe. What can happen in Bhavana? Why can't it happen in Kerala?
0: आप मेरा पॉइंट नहीं समझी हैं। मैं ये कह रहा हूं मुसलमान आवाम ने ऐसे मुफ्तियों को डिनाउंस कर दिया है।
1: अरे आवाम ने तो कर दिया है पर नेता क्यों नहीं कर रहे दोस्त? आवाम तो हमेशा अच्छी बातें ही करती है। दैट इज द प्रॉब्लम। वेरी ऑफ्टन द पॉलिटिशियंस आर नॉट विलिंग टू डू व्हाट द आवाम इज डूइंग।
0: इन मुफ्तियों का घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा कल।
1: अरे आवाम ने तो मनुस्मृति को भी डिनाउंस कर दिया बट येट यू कोट द मनुस्मृति। ओके वेरी क्विकली 30 सेकंड्स तुषार गुप्ता, देन आई एम गोइंग टू तुहीन एंड ब्रिंग इन द लेडी आल्सो। यस जस्ट 30 सेकंड्स।
2: आवाम ने इन क्लेरिक्स का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है पर कांग्रेस तो उन्हें गले लगाती है। आवाम तो इनकी बात सुनेगी नहीं पर राहुल गांधी तो इन्हें सर पे बिठाते हैं। आवाम तो इनकी बात को मानती नहीं है पर राहुल गांधी इनकी बात तो करते नहीं, वो तो मनुस्मृति पर अटैक करते हैं। पद्मजा व्हाई इट इज एंड दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी आस्क्ड that Rahul Gandhi thinks he has the license to demean, abuse, disobey Hinduism, every crux of it, every ethos of it, but he has no courage to raise a word against what clerics are saying. Vivek Srivastava कह रहे थे
0: मनुस्मृति, अरे भैया मनुस्मृति is being endorsed by the ruling party of this
2: Vivek
0: country.
2: विवेक श्रीवास्तव वन सेंटेंस, आपने कहा आवाम में हिम्मत है, राहुल गांधी में हिम्मत नहीं है क्या? आप सीधा इसका जवाब दीजिए ना।
1: No, and by no stretch of the imagination, even if individuals have said anything in support of the Manusmriti, we can safely say that the Manusmriti is not an alliance in any government across the country as opposed to the IUML, which is standing in support of the extremely regressive views of what the Grand Mufti has said. Yasmin Farooqi, I want to bring you in at this point as well, because it's not just Mr. Abu Bakr, by the way. Another person at the same event as the Grand Mufti, AP Abdul Hakim Ansari. He went a step further because people get emboldened, right? If one thing goes unchallenged, unchecked, almost, you know, a silent tacit support is given to it. What did Mr. Ansari say? He went a step further and said that if Muslim women bear 3 children, they will get a straight ticket to heaven. The rights that have been given to women is that they don't have to sweat it out by working outdoor. Their liability falls on a man, either your husband or your father or the children, because women are chosen to breed. Is this the kind of patriarchy that is being legitimized through silence? Yasminji.
3: बिल्कुल नहीं पदमजा, बिल्कुल भी नहीं। ये सब बकवास है। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी औरत का शौहर भी नहीं है और उसके भाई बाप भी नहीं है, बहुत सारे लोग अकेले होते हैं, तो क्या वो अपने बच्चों को भूखा मार देगी और वहीं ख़त्म कर देगी? ऐसा कुछ नहीं है। और जो मुफ्ती इसरार साहब हैं, मेरे ख्याल से सब लोग बोले जा रहे हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक ध्यान है मुफ्ती इसरार साहब को बीजेपी वालों ने ही सर पे ज़्यादा बिठाया हुआ है। वही राष्ट्रपति भवन भी गए थे। और मैं इस कंट्रोवर्सी में वैसे पढ़ना नहीं चाहती, वो तो बात आई थी तो मैंने बात कह दी। लेकिन हाँ, मैं आपके चैनल से ये बात ज़रूर कहूँगी कि मेरी पार्टी SDPI ऐसा ना तो सोचती है। और आप मेरे थ्रू अगर ये चाहती हैं, क्योंकि मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो मैं यहाँ से आपसे कह सकती हूँ कि ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है उनको हक ही नहीं है। इतनी बार प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि संविधान में सबको सब कुछ बोलने का हक है, तो वो भी बोले जा रहे हैं, लेकिन उनको इस्लामी नुक्ताए नज़र से इस तरह बोलने का कोई हक नहीं था। उनको नहीं बोलना चाहिए था और कोई भी पाबंद नहीं है उनका। ये आज़ाद हिंदुस्तान है, इसमें जिसका दिल चाहेगा, जो मज़हब अपनाएगा, जिसका दिल चाहेगा वो उस तरह जिएगा। कोई किसी पे पाबंदी लगाने के लिए बोलो तो बोलते रहो, वो संवैधानिक उनका अधिकार है। और अगर वो ये कहते हैं कि औरतों को बंद रहना चाहिए, तो किस बिहाफ पे कह रहे हैं वो? मेरे आज तक ये बात समझ में उनकी नहीं आई है कि इस्लाम के अगर उस पे वो पैरोकार बन के कह रहे हैं, तो उनको किसी ने ये इजाजत नहीं दी
1: है। शायद उनको जैसा अभी बताया गया IUML उनको बैक करने के लिए पहुंच जाएगा। आज हम ये डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑन हिज ओन वी कैन कंप्लीटली इग्नोर द वर्ड्स ऑफ समबडी लाइक अ मिस्टर अबू बकर एंड से हु इज ही डजंट होल्ड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। बट यास्मीन जी, फर्क तो ये है ना कि वहां पर एक ऐसे आदमी उनको बैक कर रहे हैं जब IUML के स्टेट चीफ कहते हैं

0: हैं, बट महिलाओं को उनकी अपनी सेफ्टी के लिए ये एक हिदायत दी गई है। और उसी IUML के दो मंत्री सरकार में बैठे हुए हैं और वो मंत्री चुप्पी साध लेते हैं, तो अबू बाकर साहब को भी एनकरेजमेंट मिलता है कि भाई हम किसी का हाथ है हमारे सर के ऊपर।
1: देखिए, इतनी ज़्यादा बात इस बात पे हो रही है, ये आपको भी पता है, और कोई भी समझदार मुसलमान या ना समझ भी, जिसको कम इल्म है इस्लाम के बारे में, कोई उनकी बात को ना तो तवज्जो दे रहा है ना समझ लेगा, क्योंकि वो बात सिरे से गलत है। वो उस चीज के लिए
0: तब तो आसान होना चाहिए ना, जो IUML के मंत्री हैं
1: हमारे पास।
0: जब ऑल राइट थिंकिंग पीपल लाइक योरसेल्फ आर सेइंग दैट दिस डजंट इवन मेक सेंस, व्हाई डोंट द IUML मिनिस्टर से दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस, जो आप
1: बताइए, जब
0: जो सैयद अब्बास कह सकते हैं तो IUML के दो मंत्री भी कह सकते हैं ना, IUML के चीफ भी कह सकते हैं केरला में कि बकवास है ये।
1: अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच है पदम झा। आप एक बात बताइए कि जब मुसलमानों के खिलाफ बोला जाता है तो कौन खड़ा होके बोलता है, मुसलमान काटे जाएंगे, सुअर का, मैं उस चीज को इस वक्त यहाँ कहने की नहीं है, लेकिन मैं एक बात आपको बता रही हूँ। रोज का मुसलमानों पे होता है हलाला हलाला हलाला, जबकि हलाला कोई जग वर्ड ही नहीं है इस्लाम में, कोई कुरान में हलाले का वर्ड नहीं है, फिर भी ये गाना गाया जाता है।
0: ओके, तो इन सदर यू गॉट टू राइट थिंकिंग मुस्लिम्स ओवर हियर सेइंग दिस इज एब्सोल्यूट रबिश एंड दिस शुड नॉट बी लेजिटिमाइज्ड, दिस शुड नॉट बी एम्प्लीफाइड, तो इन सदर, एंड दिस शुड नॉट बी पॉलिटिसाइज्ड, तो इन सदर।
2: नो नो, सी, यू नो,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
8: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
3: अरे मेरे राजा,
5: सबका राजा आर प्योर मसाला।
1: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
6: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन ना बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब ना बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
4: अरे मेरे राजा।

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: परेशान किया पर सब तबीयत ठीक, घर में सब ठीक है। आप लोग कितने लोग आए हो?
1: तीन जन है।
0: आप और?
1: मैं और मेरे बच्चे और हस्बैंड
0: भी आए हैं। कहाँ हैं आपके हस्बैंड? वो बैठे हैं। आप तीनों आप काठमांडू जाना चाह रहे हो, इसलिए इंतजार कर रहे हो हेलीकॉप्टर मिले, लेकिन वहाँ पे कोई इंतजाम है? वहाँ कहाँ रहेंगे आप?
1: भैया के पास।
0: आपका भैया है?
2: It's time now for us to take a short break. We've got a team of NDTV correspondents spread out across Nepal. We'll continue to track this story and bring you every aspect of what is truly an unbelievable tragedy. For the moment, from all of us here, good night.

0: Lake Ontario, but right now we're telling you about how he also wants to change the name of the Strait of Hormuz. Earlier he said that the Lake of Ontario should be named after Trump order. Meanwhile, a major turn in Sushant Singh Rajput's manager Disha Salian death case. The Bombay High Court has now ordered an FIR and a CBI probe, raising fresh questions over the Mumbai police investigation and the handling of the case. The ruling has triggered a political attack, with the BJP targeting the then Uddhav Thackeray government, questioning why the death was not independently probed and whether anyone was being protected. Disha Salian died in June 2020 after falling from a 14th floor building. The police later closed the case as suicide. 6 years on, the High Court has ordered a CBI probe. Disha's father, Satish, has exclusively spoken to NDTV and said that he has faith that the truth will emerge. He maintains his daughter did not die by suicide and alleges powerful people were behind her death. Take a look.
1: आदित्य ठाकरे ड्रग्स का बिजनेस करता है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इन्वेस्टिगेशन में फोन रिकॉर्ड डिनो मौर्या का, उनका फोन टैपिंग किया. ये नारकोटिक्स ब्यूरो के फाइल की बात कर रहा हूँ, ये मेरे घर का रिकॉर्ड नहीं है. तो वो उसके जो छोटे छोटे बच्चों के साथ में अत्याचार वाले जो भी आरोप थे, जो भी कुछ था, वो उससे रिलेटेड वीडियो रिकॉर्डिंग प्रूफ्स स्टिंग ऑपरेशन किया था दिशा ने. वो कॉपी हैंड ओवर की उसने सुशांत सिंह राजपूत को. तो उसके बाद में उन्होंने सचिन वाजे को वगैरह लाकर प्लान करके दिशा का गैंगरेप किया, मर्डर किया. बाद में 8 तारीख को ये सब किया और फिर 9 तारीख का स्टोरी क्रिएट किया कि अरे वो ऊपर से गिर गई.
0: Let's now give you a lowdown of what is the Disha Salian case so far. Well, it traces back to 6 years ago when she died. On June 8th, Salian died after falling from a Mumbai high rise. The family alleges foul play and seeks fresh probe as well. The police has said no FIR registered initially. The SIT found no foul play. The Bombay High Court questions the probe and FIR delay. And now the High Court has ordered a CBI probe and also has asked the police to file an FIR. And as questions mount over the investigation, NDTV spoke exclusively to Disha's father, who has been seeking answers for years.
2: Satish ji, Bombay High Court ne ek CBI investigation order kiya hai, registration of FIR order kiya hai. Satish ji, aapka comprehensive reaction kya hai? Aapki maang thi ki ek independent investigation ho.
3: सही है, मेरी मांग थी ऐसी और मेरे वकील की मांग थी. वो कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और सीबीआई को इंस्ट्रक्शन दे दिया, तुम इन्वेस्टिगेशन करो. हेलो,
2: आपका क्या एक्सपेक्टेशन है अभी सतीश जी? 6 साल गुजर गए हैं, बहुत कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हुए इन्वेस्टिगेशन में. क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल हुआ था एक बार. आपने भी पहले बोला था कि आपकी बेटी के डेथ को लेकर पॉलिटिक्स ना हो. आपका क्या कहना है अभी, जब सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगा अभी, आपका क्या कहना है अभी?
3: सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगा ना, जरूर करेगा. आज अभी पहले का बात छोड़ दो, अभी की बात करो ना.
2: 6 साल के बाद आपको लगता है कि सच्चाई सामने आ सकती है इन्वेस्टिगेशन से?
3: सौ टका आना चाहिए. आ सकती है क्या? आएगी सच्चाई. जो सच्चा है वो सच्चा आएगी, झूठ नहीं है.
2: और आप भी सवाल के जवाब देंगे इस इन्वेस्टिगेशन में? आपका भी समनिंग होगा सर, आपसे भी पूछताछ होगी, आप भी करेंगे इसमें?
3: मुझे पूछेगा तो मैं जवाब दूंगा.
2: आपके हिसाब से सतीश जी क्या हुआ था? क्योंकि 6 साल में हमको समझना है कि एक साइड से बोला जाता है कि ये सुइसाइड था, दूसरे साइड से आपके कहना है कि ये कॉन्स्पिरेसी है, उसको मार दिया गया है, ये कॉन्स्पिरेसी है, कुछ बड़े लोग हैं इन्वॉल्व. क्या कहना चाहेंगे आप अभी जब ये इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू होगा सीबीआई की तरफ से?
3: ये तो सुसाइड 100% नहीं है. नहीं नहीं, ये सुसाइड तो नहीं है, ये कुछ है उसके अंदर, कॉन्स्पिरेसी है बड़े लोग का, कुछ है उसका, सुसाइड तो नहीं है. कि आप भी बता सकते हैं, हमारा बेटी का फोटो देख के अंतिम संस्कार का फोटो